महेंद्र कपूर जी और हेमंत कुमार जी की आवाज़ में ओपी नैयर के साथ पर फिल्म संबंध में से निकाल कर ये गीत हम आपको सुनाए ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए एक ही गीत और हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे कार्यक्रम लेकर बढ़ेंगे। ये गीत इस तरह से है।

हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, ये शानदार गीत चला लता जी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हमने पेश की www.5fm.nl पर। आप चुने जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। या शाम के कार्यक्रम में तो लीजिए हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

आई लव यू, ये शानदार डुएट हमने पेश की ऊपर फॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं और मैं चला रहा हूँ, इस तरह से हमने पेश की ये गीत। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है।

देखो बिना सावन बरस रही बदली, और ये शानदार गीत हमने पेश की रफ़ी साहब की आवाज़ में। निकती निघ्न फैफ तक का ये गीत हंसराज बहल के साज पर।

मेरा सनम सबसे प्यारा है, ये शानदार गीत चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में हमने पेश की, और ये था आशा जी और कुमार सानू, फिल्म है दिल का क्या कसूर, दिल का क्या कसूर में से निकाले हैं ये शानदार गीत हमने पेश किए। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है अगर ये आपको सुना दूँ।

जाने कैसा है मेरा दीवाना, या क्या बात है। आशा जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए फिल्म है आंसू बन गए फूल, उसी में से निकाल कर हमने पेश की ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो फाउन एफएम पिंटनल पर। आप चुने जो लोग चुन के मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। आप चाहे जहाँ भी होंगे, दुनिया के जिस कोने में भी होंगे, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुन हैं। सुबह हो या शाम होगा, रात्रि होगी, पता नहीं कौन सा मौसम है, कौन सा दिन है, आपके जगह आपके जहाँ पर हैं, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए शुभकामना के साथ हम पेश कर रहे हैं ये गीत।

शम्मा बुझने को चली, ये गीत हम निकाले हैं, देखते हैं। फिल्म मेरे ध्यान से निकल गया, शम्मा बुझने को चला। फिल्म गंगा की लहरें, हाँ गंगा की लहरें में से निकाले हैं रफ़ी साहब का ये गीत, हम आपको सुनाए हैं फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में।

संग मरमर से तराशा हुआ ये शोक बदन इतना दिलकश है कि अपनाने को जी चाहता है। सुर्ख होंठों में थिरकती है वो रंगीन शराब जिसको पी पी के बहक जाने को जी चाहता है, लेकिन इस हुस्न पे मर जाने को जी चाहता है। हमसे बेहतर है ये पाजेब जो इस पांव में है, रख ले कल के लिए ये दूसरी पाजेब दिल, कल इसी बज्म में फिर आने को जी चाहता है।

इस रेशमी पाजेब की झनकार की सदके लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में ये शानदार गीत पेश किया गया उर्फ़ान हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं और मैं चला रहा हूँ। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं। क्या ख्याल है, शाम के वक्त है और आप भी हैं और मैं भी हूँ।

लता जी और मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म छाया में से निकाले हैं। निगत एन एस एस का ये फिल्म है और सलील चौधरी के साथ पर हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, जी हाँ, इस तरह से आ रहा है।

खाई रे हमने कसम हंस परदेसी। लता जी आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की। चलो एक गीत और हमने प्लेयर में रखे हैं लेकिन समय नहीं मिला कि ये गीत कौन सा है। हाँ ये तो पता है कि फिल्म बाबू का है, निकिता फैफन तख्त का है और आशा जी और किशोर कुमार जी ने गाए हैं और देखते हैं राजेश रोशन के साथ, ये सब पता है लेकिन गाना चलो मैं भी सुनता हूँ, उम्मीद है आप भी सुनोगे।

तो दोस्तों प्रोग्राम का शुरुआत तो सदियों से करते आ रहा हूँ, वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ, फ्रॉम द मूवी ललकार 1926 कंपोज्ड बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी, और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं सुर का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी के आज गालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो, क्या जाने कल कोई साथ ही छूट जाएगा, जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है।

सुंदर प्रोग्राम कुछ दिनों से आप सुनते आ रहे हैं। महान संगीतकार यारे 50 60 70 द ग्रेट ग्रेट ग्रेट मैस्ट्रो मदन मोहन जी के कुछ नगमे आप सुनेंगे, उसके बारे में कुछ बातें भी आप सुनेंगे, और उसके बाद सिर्फ नगमे सुनेंगे आप जिन फिल्मों में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर दिलीप कुमार जी ने काम किए हैं। बीच में कुछ ज्ञान के बातें है भी, कुछ शेर शायरी है, तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना यार, मजे लेते रहना जहां पर भी हो, जिस हाल में हो। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे, और आप सभी को हिल फील लेस्टर प्लेजियर।

गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत रफी साहब जी के मधुर आवाज में। तुम्हारे प्यारे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्रिय प्रिय सुनने वालों, आज का इस हसीन प्रोग्राम का शुरुआत मैं करने वाला हूँ सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी के मधुर आवाज में। आप सुनेंगे एक अति सुंदर बयान, ऐड फिल्म जहां तुम वहां हम, आकाशवाणी में ये नगमा पेश किया गया। सुपरहिट सॉन्ग कैसे कटेगी जिंदगी और वो भी तेरे बगैर, अ मास्टरपीस ऑफ कंपोजिंग बाय मास्टरो मदन मोहन रफी साहब जी के मधुर आवाज में।

ब्यूटीफुल सॉन्ग दिल को छू लेने वाला बयान सुनाया आप सभी को सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब कंपोज बाय मैस्ट्रो मदन मोहन जी। अगला बयान एक और जबरदस्त सॉन्ग है और एक बार फिर सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब फ्रॉम द मूवी शराबी 1964 राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ सुपरहिट सॉन्ग। कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो जरूर आएगा। रवि साहब जी के मधुर आवाज में आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम

मुझको बस आवारा समझा जिसने मेरा

मुझको बस आवारा समझा जिसने मेरा

Beautiful song, wonderful song from the movie Sharabi 1964, composed by Maestro Madan Mohan Alfazete Rajinder Krishan Kaur Awaz Suru Ka Badshah Ravi Sahib Ji Ka. श्रोताओं को मालूम होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा नगमे मदन साहब ने रफ़ी साहब और लता जी के लिए कंपोज किया है. लता जी को तो वो अपना बहन मानता था और राखी के दिन ये दोनों भाई बहन बहुत ही शान और शौकत के साथ रक्षाबंधन मिल के मनाते थे. तो अब आ रही है आप श्रोताओं की खिदमत में सुरों का देवी क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के मधुर आवाज में आप सुनेंगे आपकी नजरों ने समझा प्यार की काबिल मुझे. ऐड फिल्म अनपढ़ निकटिंग ट्वीन सिस्टर राजा मेहदी अली खां का लिखा हुआ ये अति सुंदर बयान स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम.

इन पर आपकी नजरों ने समझा सुरोका देवी लता मंगेशकर जी के मधुर आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। राजा मेहदी अली खां के अल्फाजे कंपोज बाय द जीनियस म्यूजिक डायरेक्टर बड़का भैया श्री मदन मोहन जी। एक और अति सुंदर बयान है आप श्रोताओं की सेवा में मैं रख चुका हूं प्लेयर में सुनाने के लिए। राजा मेहदी अली खां एक महान लेखक था जिसके साथ मदन मोहन जी ने बहुत काम किए और उन्हीं के अल्फाज में आप सुनेंगे लता जी के मधुर आवाज में। अगर मुझ है मोहब्बत है क्या बात है, कंपोज बाय माएस्ट्रो मदन मोहन जी फ्रॉम द मूवी आपकी परछाइयां, ऑल्सो फ्रॉम 1964।

0: Beautiful song.
1: So enjoy.
0: Wonderful song from the movie Aapki Parchhaiyaan 1964. Queen of Melody Lata Mangeshkar ji ke madhur awaaz mein aap sabko ne ati sundar bayan suna. Composed by Madan Mohan Alfazeti, Raja Mehdi Ali Khan ka. To vaadak ke mutabik hamare priye priye shrotaon kuch gyan ke baatein ho jaye. पुराने जमाने और इस जमाने के कुछ विद्वानों, कुछ पढ़े लिखे लोगों और कुछ मशहूर मशहूर लोगों ने इंसानियत, मनुष्य, मैन सहित के बारे में अति सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें लिखे हैं जो मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूं। यही आशा उम्मीद लेकर कि इन बातों से कुछ ना कुछ तो जरूर हम लोग सीखेंगे। तो जरा गौर फरमाएं। अर्ज किया है, बहुत ही पुराने जमाने का आदमी था श्री मार्कस ऑरेलियस। He was a Roman keizer en leefde van 121 tot 180 na Christus. Marcus Aurelius ne kaha hai manushya ke bare mein aur ki vergeet niet, het is de geheime kracht diep in ons weggeborgen die onze drijfveren stuurt. Daar komt die overredende stem vandaan. Daar ligt de kern van het leven. Daar zouden we zelfs kunnen zeggen, is de mens zichzelf? Ik hoor Mahagyani Sri Inayat Khan ne bhi kaha hai manushya ke bare mein ki, he was an India's musicus, schrijver en filosoof, leefde van 1882 tot 1927. Aur Inayat Khan ne kaha hai manushya ke bare mein ki, de mens die tracht te bewijzen dat zijn geloof beter is dan dat van een ander, verstaat de zin van de godsdienst niet. Akema Kahaisri Midas Dekker. Hij is een Nederlands bioloog, presentator en schrijver, geboren 1946. Oh, Midas Dekkers Nikahaya Manushya Kibarmiyaruki. Een huisdier geeft ieder mens de kans een baasje te worden. Aage me kahai Sri Napoleon Bonaparte. Hij was een Frans staatsman en keizer. Leefde van 1769 tot 1821. O Napoleon Bonaparte Nikahaya Manushya Kibarmiyaruki. Er bestaan twee hefbomen om de mens in beweging te brengen. Vrees en eigenbelang. Friedrich Nietzsche. Hij was een Duits dichter en filosoof. Leefde van 1844 tot 1900. O Friedrich Nietzsche. Het slechte is de beste kracht van de mens. Blaise Pascal, hij was een Frans wis- en natuurkundige en filosoof, leefde van 1623 tot 1662. Blaise Pascal, nekaha hij manushya kibarmiyaruki, in ieder mens is er een oneindige afgrond die men alleen met God kan vullen. Albert Einstein, Mahagyani, ook de uitvinder van de atoombom. Hij was een Duits-Amerikaans natuurkundige, leefde van 1879 tot 1955. Albert Einstein, nikahai manushya kibarmiyaruki, de mooiste ervaring die een mens kan meemaken is het mysterieuze. Het is de fundamentele emotie die ware kunst en ware wetenschap creëert. Freek de Jonge, hij is een Nederlands cabaretier, geboren 1944. En Freek de Jonge, wie kun je kahai manushya kibarmiyaru, or een mens zou zich veel vroeger moeten realiseren waar het allemaal te laat voor is. Een doordenkertje hoor, heel goed Freek. Huxley, hij was een Engels schrijver, leefde van 1894 tot 1963. और अल्दूस हक्सली ने कहा है मनुष्य के बारे में कि ervaring is niet wat een mens overkomt. Het is wat een mens doet met wat hem overkomt. En de laatste van vandaag, Kaisi Confucius. Hij was een Chinees filosoof en leefde van 479 voor Christus tot 551 voor Christus. Bahut hi purane zamane ka aadmi tha. Aur Confucius, Chinese filosoof, ne kaha hai manushya ke bare mein yaro ki het is niet de waarheid die de mens groot maakt, maar de mens die de waarheid groot maakt. Kya baat hai, bahut hi satya baat, satya vachan, uncha baat ne kaha ye Chinese filosof Confucius ji ne. हमारे पेपरी श्रोताओं, अभी आप कुछ उदाहरण कहावते सुने जो मनुष्य के बारे में जाता है. लेकर इन बातों को मैं आप श्रोताओं को सुनाया कि कुछ ना कुछ सीख तो जरूर इन बातों से हम लोग सीखेंगे ना. तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं यारो. अब आप कुछ बातें सुनेंगे ये महान संगीत के बारे में, कुछ अनसुनी बातें, और खास करके उनके बेटा समीर मदन मोहन कोहली के आवाज़ में आप उनके पिताजी के दिग्गज मदन मोहन जी के बारे में कुछ बातें सुनेंगे. मिलके सुनते हैं.
1: नमस्ते, मैं हूँ एकता जैन और आज का हमारा एपिसोड सिर्फ म्यूजिक पे रहने वाला है. वो म्यूजिक जो हर किसी को पसंद आता है, हर किसी के दिल के करीब है, और हमारे दिल के करीब जो होने वाले हैं, आज होने वाले हैं मदन मोहन जी के बेटे समीर मोहन जी. हेलो,
2: वेलकम. थैंक यू.
1: आई नो आपने सुना रहेगा कि मैं कैसे हड़बड़ा
2: रही. पहले कि आप कोई सवाल पूछे मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके और आपके देखने वालों को कि इस साल मदन जी को हमसे बिछड़े हुए एग्जैक्टली 46 इयर्स हो जाए, और अगर इतनी सालों के बाद भी आप लोग याद करते हैं उन्हें, आपके लिसनर्स याद करते हैं, ये कुदरत का करिश्मा है. एंड आई एम एवर सो ग्रेटफुल टू ऑल हिज ऑल द लवर्स ऑफ म्यूजिक एंड पीपल हु लव हिज म्यूजिक फॉर हैविंग केप्ट हिम एंड हिज फिनोमिनल लेगेसी अलाइव. थैंक यू सो मच. अब आप पूछे जो आप पूछना चाहिए.
1: मैं ये सबसे पहले तो आपने सुना रहेगा कि मैं कैसे हड़बड़ा रही थी उनका इंट्रोडक्शन करने के लिए. बिकॉज
2: बिल्कुल हड़बड़ाइए नहीं.
1: सच अ ग्रेट मैन.
2: थैंक यू सो मच.
1: बिकॉज वी कैन नॉट से इन वर्ड्स कि वो क्या थे, उन्होंने क्या काम किया हमारे.
2: जी, आप मानेंगे नहीं, कभी कभी मेरी भी जबान थरथरानी थी जब उनके बारे में बात करता हूँ.
3: Het is Amazon Prime Day. Twee dagen lang geweldig.

0: सॉरी अबाउट दैट
1: गाइस बट प्लीज
0: बट हम मदन जी के बारे में ये जानना चाहेंगे कि उनका बर्थ कहाँ हुआ, फिर वो इंडिया कैसे आए, बिकॉज हमने जहाँ तक सुना है कि वो कहीं और से इंडिया आए।
1: जी नहीं, ऐसा है कि मेरे ग्रैंडफादर, मेरे पिताजी की पैदाइश बगदाद में हुई थी, जो इराक का कैपिटल है। उस जमाने में अंग्रेजों की मिल्कियत थी, पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, और मेरे ग्रैंडफादर वहां इराकी पुलिस में अकाउंटेंट जनरल थे। तो 1924 में 25 जून को मदन जी की पैदाइश बगदाद में हुई, और फिर करीब 7-8 साल बाद जब बगदाद, जब इराक अंग्रेजों से आजाद हुआ, तब मेरे ग्रैंडफादर अब वापस आ गए अपने होम टाउन, जो इस वक्त पाकिस्तान में है, चकवाल नाम का एक छोटा सा शहर है रावलपिंडी के पास, और भी मदन जी की कुछ साल वहाँ पैदाइश हुई। और फिर बड़े इंटरेस्टिंग सर्कमस्टेंसेस में मेरे ग्रैंडफादर बॉम्बे शिफ्ट हुए, पहले बॉम्बे टॉकीज में पार्टनर बने, देविका रानी उसकी मालिक थी उस जमाने में, हिमांशु राय उनके हस्बैंड, और बाद में फिर बॉम्बे टॉकीज छोड़ के फिल्मिस्तान स्टूडियोज के पार्टनर बने। तो मदन जी की बेसिकली स्कूलिंग मुंबई में ही हुई है, सेंट मैरी स्कूल।
0: वाओ, ओह माय गॉड, दैट इज सच अ लॉन्ग जर्नी ऑफ
1: वेरी लॉन्ग जर्नी
0: ऑफ
1: बगदाद टू चकवाल टू मुंबई यस,
0: एंड मुंबई से हमारे सबके दिलों में।
1: नहीं, ऊपर मुंबई से भी एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग सफर है कि मेरे ग्रैंडफादर हालांकि स्टूडियो के मालिक थे
0: जी,
1: मदन जी उस जमाने में अपने यंगर डेज में शौक था कि मैं थोड़े बहुत एक्टिंग करूं, म्यूजिक में आऊं, मेरे ग्रैंडफादर नहीं चाहते कि वो फिल्मों में आए। तो उन्होंने उनको आर्मी की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। पहले देहरादून में एक स्कूल है विच बेसिकली ट्रेन्स पीपल फॉर द आर्मी, तो वहां पे करीब एक साल रहे स्कूलिंग खत्म करने के बाद, और फिर जब वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुआ तो मदन जी ज्वाइंट द आर्मी, एंड 2 साल के लिए वो फौज में रहे, 1942 to 1944, और जैसे वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ उन्होंने आर्मी छोड़ दी।
0: बट हाउ आर्मी एंड म्यूजिक,
1: अब वो क्या आर्मी तो इसलिए हुआ जैसे आंसर का कि मेरे ग्रैंडफादर का थोड़ा सा बहुत दबाव था उन पर, पर बेसिकली शौक तो म्यूजिक का था। फिर उन्होंने आर्मी छोड़ी तो ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में उन्हें एक नौकरी मिल गई, वो पहले 1-2 साल वहाँ रहे, फिर दिल्ली आए पर कुछ खुश नहीं रहे, और फिर वापस बॉम्बे आए स्ट्रगल करने के लिए। बट हुआ क्या कि मेरे ग्रैंडफादर को बिल्कुल ये बात रास नहीं आई, उन्होंने उनको लिटरली एक तरह से कहूँ तो घर से बेदखल कर दिया। तो मदन जी जो भी बने छोटे या बड़े अपने बलबूते पे बने,
0: छोटे बड़े नहीं होते।
1: नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल, उनको इसके बावजूद कि मेरे ग्रैंडफादर फिल्मिस्तान स्टूडियो के मालिक थे, मेरे ग्रैंडफादर का बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला अपना करियर शुरू करने में और बनाने में। मैंने तो कई आर्टिकल्स उनके पढ़े हैं जहाँ उन्होंने कहा है कि मैं 6-6 दिन रोड पे सो रहा हूँ, मैंने 8 दिन तक खाना नहीं खाया है, बट एक जिद थी कि मुझे म्यूजिक की बिजनेस में ही, म्यूजिक की दुनिया में ही आना है।
0: तो ये जो नेशनल फिल्म अवार्ड जो है जी, वो जिस साल में मिला तो उसके इंसिडेंट के बारे में हमने सुना।
1: वह क्या है कि उस वक्त तक मैं आपको सीरियसली अगर बताऊं तो मदन जी थोड़े से ऊब गए थे, थोड़े से डिसिल्यूजन हो गए थे कि इतने साल इतना अच्छा काम करने के बाद उन्हें कभी उस किस्म की रिकग्निशन मिली नहीं। तो ये जब मिला उन्हें, ये फिल्म थी दस्तक, संजीव कुमार और रेहाना सुल्तान इसमें थे, और जब मैंने उनको जाके खबर दी तो वो पहले तो मानने को तैयार ही नहीं थे, उनको बड़ी मुश्किल से मनाना पड़ा कि यू एक्चुअली वन इट, बिकॉज वाई देन ही वॉज लिटिल डिसिल्यूजन एंड लिटिल कट अप विद द वे द इंडस्ट्री वाज ट्रीटिंग हिम।
0: ओके,
1: आर्टिस्ट है ना, अब क्या करें, आर्टिस्ट थोड़े से सेंसिटिव होते हैं बेसिकली।
0: और लता जी के साथ उनका कैसा रिश्ता था? लता जी के साथ सुना है कि मतलब कुछ ज्यादा ही
1: ऐसा है कि मैंने भी सुना है कि लता मदन जी के साथ, इससे पहले कि मदन जी म्यूजिक डायरेक्टर बने, मदन जी ने अपने एक फादर की एक फिल्म बनी थी शहीद, उसमें लता जी के साथ एक डुएट गाया था, बच्चों का गाना था। तो उस वक्त लता जी से पहली मुलाकात हुई थी उनकी, और उस वक्त उन्होंने लता जी से कहा था कि अगर मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा तो मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें गाएं। पर जैसे कि हमारी इंडस्ट्री का कभी कभी रिवाज है, लोगों ने जाके लता जी के कान भर दिए कि बड़े बाप के बेटे हैं, पता नहीं कितना सीरियस है। तो मेरे फादर की जो पहली फिल्म थी आंखें, इसके बावजूद कि लता जी को ऑफर गया था, वो उन्होंने उस फिल्म में गाने से इनकार कर दिया। तो उसके बाद लता जी जाके मिले उनसे और उनसे मुलाकात हुई, और बड़ी सपोजिटली इमोशनल मुलाकात हुई। उसी मुलाकात में उन्होंने उनको अपनी बहन बना दिया और लता जी ने एंड तक ना ही उनकी बहन बनने का नाता निभाया, हमें हमारी तो गॉड मदर रही, हम बच्चों को उन्होंने अपने बच्चों की तरह पाला है. इट्स बीन अ वेरी स्पेशल बॉन्ड एंड अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप. और उनकी लिटरली कभी कभी बेटी भी बुलाते थे उन्हें, तो इट वॉज वेरी स्पेशल बॉन्ड.
0: तो उनके फेवरेट सिंगर कौन थे?
1: लता मंगेशकर. वो तो कभी कभी ये भी कहते थे कि अगर मैं कोई मेल सॉन्ग भी बना रहा हूँ तो मैं सबकॉन्शियस ये सोच रहा हूँ कि अगर लता गाती तो कैसे
0: गाती.
1: रफी साहब वाज वेरी फेवरेट. रफी साहब किसके फेवरेट नहीं थे?
0: किसी के फेवरेट, सबके फेवरेट.
1: इन द अर्ली डेज ऑफ हिज करियर वेरी डियर फ्रेंड वाज तलत महमूद साहब, सैंग अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स बट देन ही फेडेड आउट अ लिटिल बिट. तो बेसिकली रफी साहब, लता जी, आशा जी टू अ सर्टेन एक्सटेंट ऑफ कोर्स.
0: सो ये उनकी जो जर्नी थी एंड उसके बाद हमने सुना कि उनके ऊपर एक स्टैंप आई थी, 5 रुपए की स्टैंप
1: ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये करीब 5-6 साल पहले की बात है कि करीबन 100 करीबन इंडस्ट्री के 100 पर्सनालिटीज पर उनको ये स्टैंप बना था. एंड ही वाज वन ऑफ द लकी वंस टू हैव बीन चोजन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया.
0: Wow.
1: To give him this
0: honor. It's really an honor ki like aapke naam se aapke photo ke saath ek stamp.
1: Bilkul, bilkul, bilkul.
0: And it's a symbol of India basically.
1: Absolutely.
0: Okay, to jo unki jo last film mein jo music aaya, hum kehte hain ki Veer Zara mein unka jo music aaya, to how is the feeling about that thing?
1: It's unbelievable. Because dekhiye kya hai ki उस जमाने में, उन जिस जमाने में वो म्यूजिक देते थे, फॉर एग्जांपल दिलीप कुमार सबसे बड़े हीरो थे, पर दिलीप साहब के साथ उन्होंने कभी कोई फिल्म नहीं की बिकॉज वो कमर्शियली उस ब्रैकेट में कभी आए ही नहीं. तो ये तो अजूबा था. आई मीन इट्स आई थिंक इज द ओनली कंपोजर इन द वर्ल्ड इन रिसेंट टाइम्स टू जिनका ओरिजिनल काम उनके जाने के 30 साल बाद लोगों के सामने आया. ओरिजिनल काम जो पहले कभी लोगों के सामने नहीं आया. ये दुनिया उनकी आवाज में उनके स्कूल से पढ़ी थी, हमें मिली थी. मेरे भाई साहब जो उस वक्त यशोपा साहब के लिए काम कर रहे थे, उनको सुनाई, उनको अच्छी लगी. द रेस्ट इज हिस्ट्री. वो फिल्म बनी, वो म्यूजिक बहुत, और उन्हें उस फिल्म के लिए अपना पहला पॉपुलर अवार्ड, द आईफा अवार्ड 2004 का मिला.
0: वाओ,
1: द ओनली पॉपुलर अवार्ड ऑफ हिज करियर. न्यू फुलटारा नेचुरल एंड

0: तो लता जी की जो हमने स्पेशल बॉन्ड की बात की, उन्हें लता जी एक स्पेशल नाम से भी बुलाती थी, वो
1: मदन भैया
0: नहीं, देयर इज समथिंग एल्स, गजल के
1: बादशाह। वो क्या है, एक फिल्म रिलीज हुई थी 1958 में, इसका नाम था अदालत। अदालत की थी, अदालत वाज अ स्टोरी ऑफ दिस गर्ल हु बिकम्स अ नॉच वुमन, यंग लड़की, पढ़ी लिखी लड़की, तो उसमें गजलों का स्वर स्कोप था, वो मुजरा गाती है, तो उसमें तीन गजलें इतनी मशहूर हुई, हालांकि फिल्म नहीं चली, पर तो उस पर के बाद ऊपर एक स्टैंप लग गया। और ये बात सही है कि फिल्मों में गजलों का जो चलन चला वो बादल जी से ही शुरू हुआ, और बादल जी डिड फिनोमिनल वर्क, बट इट्स नॉट दैट द ओनली, दैट इज नॉट द ओनली काइंड ऑफ वर्क ही डिड, उन्होंने हर किस्म का गाना बनाया है। अब आप देखिए, तुम जो मिल गए हो, आज लोग कहते हैं कि इज द अल्टीमेट वेस्टर्न सॉन्ग इन हिंदी फिल्म्स, वो भी उनका है
0: जी।
1: तो हर किस्म का, लग जा गले भी उनका है, तो हर किस्म के गाने बनाए हैं। अब लग जा गले आपको मालूम होगा, आप YouTube पे इतना काम करते, 200 मिलियन व्यूज ऑन YouTube,
0: यस,
1: अपार्ट फ्रॉम आई थिंक ऑलमोस्ट 12 to 13,000 versions of that song on YouTube. So
0: versions अभी आजकल cover,
1: तो ये जो unfortunately ये जो success उनके नाम आई है, unfortunately उनके जीते जी उन्होंने नहीं देखा।
0: That is little sad part of.
1: और वो शायद to a great extent वो उन्हें लेके चला गया साथ। He was a little disillusioned towards the end of his life. Because he felt he was not wanted. He felt people don't appreciate him. वो एक दिल में एक feeling आ गई थी कहीं ना कहीं।
0: Oh my God! Like कभी भी, हमेशा हम लोग ने फिल्म इंडस्ट्री के बारे में ये हमेशा सुना है कि किसी को कुछ अप्रिसिएशन उसकी जीते जी नहीं मिलता है, जैसे हमने मदन जी के बारे में सुना, सेम वैसी ही बात हमने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी सुनी। जब वो जिंदा थे तब उनके पास उतनी अप्रिसिएशन उन्हें नहीं मिली, उनके मरने के बाद जो उनकी फर्स्ट फिल्म जो रिलीज हुई, दैट मेड लाइक हिस्ट्री।
1: एब्सोल्युटली।
0: सो आई डोंट नो व्हाट्स विद द फिल्म इंडस्ट्री और ये,
1: मतलब दे फॉलो एन एडेज कॉल्ड नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। सो ठीक है, इट्स इन द बेट्स, ओके। आखिर प्रोड्यूसर अपना पैसा डालता है फिल्म में, तो वो तो चाहे, मदन जी पे के बारे में लोग कहते हैं म्यूजिक तो उनका बहुत अच्छा है, बट फिल्में चलती नहीं है, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में, और मदन जी वाज अ वेरी वेरी प्राउड एंड अ वेरी वेरी सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैन, उन्होंने कभी किसी के पास वो गए नहीं काम मांगने के लिए, कभी किसी से कहा नहीं कि मुझे काम दो, वो अपनी जिंदगी अपने असूलों पर जीते रहे, और शायद ये इंडस्ट्री उन लोगों को अप्रिशिएट नहीं करती जो लोग असूल पसंद लोग हैं।
0: That's what I think. तो मदन जी ने जो फिल्म में तो काम किया है, उनके अलावा जो हम कहते हैं नॉन फिल्मी एल्बम्स,
1: नॉन फिल्म एल्बम्स नहीं थे, not,
0: कभी नहीं किए उन्होंने, he was not drawn to it,
1: या उस जमाने में वो चलन था ही
0: नहीं,
1: not to a great extent.
0: Okay.
1: और मदन जी, एक चीज आपको याद है, मदन जी died very young, he was only 51 when he passed away. He had a lot of music left in him, but that's the way life is.
0: That's the way life is. So, ये थे समीर जी मदन मोहन जी के सुपुत्र,
1: बिल्कुल,
0: and we had
1: very very proud to be his son.
0: Yes, very proud son. And
1: ऊपर वाला मुझे हर जन्म में उनका बेटा बना, नहीं मैं सच ही कह रहा हूँ,
0: तथास्तु,
1: thank you.
0: I am being little funny here.
1: No, it's absolutely.
0: But that's how the life goes on. You have to live it on.
1: No, we are. देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा, आज 46 साल हो गए. मैं वो जब गुजरे, मैं 14 साल का था, आज मैं 60 साल का हो चुका हूँ. तो वक्त निकल गया, पर एक चीज जरूर है कि जितना उनके जाने के बाद उनके म्यूजिक को अप्रिसिएशन, इट्स अनबिलीवेबल. मैं आपको बता नहीं सकता. इट इज सिंप द वे ही इज रिस्पेक्टेड by the younger generation of this industry and a lot of the singers and music directors. Unka naam jab kahin liya jata hai to log izzat se sar jhukate hain apna. Ye ajuba hai. This is a miracle, absolutely. And I'm ever so grateful to God and his fans for that.
0: Yes, yes. Thank you very much.
1: Thank you, Ekta ji. Thank you so much.
0: तो ये थे समीर जी, and I hope कि आप लोगों ने enjoy किया हमारी chit chat, because ये थोड़ा सा sun का problem, ये वो बहुत कुछ चल रहा था, but we had an amazing life journey of Madan Mohan ji. जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि starting में मैं, I was stammering, I don't know what to say, मेरे पास शब्द नहीं थे बोलने के लिए उनके लिए, बट जब उनके बेटे से बात की तो अच्छा लगा कि समीर जी ने हमें उनकी पूरी लाइफ जर्नी से हमें गुजारा. इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग. आई होप यू ऑल लाइक इट. थैंक यू वेरी मच.
2: तो जी हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, आप अभी कुछ अनसुनी बातें सुना जो ये महान संगीतकार मदन मोहन जी के बेटा समीर मदन मोहन कोहली जी ने आप श्रोताओं को सुनाया. तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा. तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज़ है, जनता का आवाज़ है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज़ है. तो ब्रेक के बाद मिलता हूँ यारो, कहीं जाना मत.

स्थानीय रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। अनतिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड बुद्धम थोर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो उक्त बुलस्त्र फिया द प्लस रेडियो एंड नतिलक इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाइश से हो, जरूरी खबरें, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में, या तो इवनमेंट और खानिशात और ऑर्गामान हो, ऑर्गा वुमन हो, तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो ज़रूर उसके बारे में कॉमर्शियल बनवा कर, या तो अपने व्यापारी के बारे में कॉमर्शियल बनवा कर और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ज़रूर ब्रॉडकास्ट ऐलान करवाना यार हो, तो देखना कैसे चमककार पे चमककार हो जाएगा। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। किफायत सस्ते दाम, सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो, आप मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें तैरेंस कंटोर यूरोप 07-3-62-2-47, या तो आप तार करें अपने 07-3-62-2-77। तो जो भी रेडियो का काम हो, डेंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। बेंट यू नो खेन लेट फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और रो को भी बनाए। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें आप 07-3-62-2-77, या तो आप 07-3-62-2-77 पर। तो आप भी जल्द से जल्द फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और रो को भी बनाए। इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना यार, चर्चा करते रहना, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू इसके लिए, और हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। वादा के मुताबिक एकदम बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ, और बीते हुए हफ्ते हम लोग पहुँच चुके थे तो फिल्म आग का दरिया जो रिलीज किया गया था 1999 में, और इस फिल्म में दिलीप साहब जी ने काम किया है। मलकाए हुस्न ब्यूटीफुल अभिनेत्री द ग्रेट रेखा जी के साथ साथ भी काम किया है राजीव कपूर। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और अल्फाजे है राजेंद्र कृष्ण जी का। कुछ गाने रह गया था सुनाने के, तो मिलके सुनते हैं छम छम फ्रॉम द मूवी। ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं के सेवा में मैं रख चुका हूँ प्लेयर में सुनाने के लिए। महान गायक कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण जी ने मिलके अति सुंदर बयान को गाए हैं। आप श्रोताओं के नाम

सूफी आग का डरिया दिल है लूटने को तैयार, मशहूर गाने वाली कविता कृष्णा मूर्ति और अनुराधा पौडवाल कोरस के साथ मिलके आप श्रोताओं को ये 30 मिनट बयान सुनाया। कंपोज बाय लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, अल्फाज़े थे राजेंद्र कृष्ण जी का। अगला बयान गोरिया उसकी दीवानी क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आशा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज में, अल्फाज़े राजेंद्र कृष्ण का, कंपोज बाय लक्ष्मीकांत प्यारे लाल।

beautiful song from the movie आग का डरिया, क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आयशा भोसले जी के मधुर आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज और अल्फाज़े थे राजेंद्र कृष्ण का। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चून है गीत और गजल ऑफ दिस गोत नामक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। नगमे चल रहे हैं जिन मूवीज में महान अभिनेता द ग्रेट दिलीप कुमार जी ने काम किया है, तो एक आखिरी बयान आप सुनेंगे एड फिल्म आग का डरिया, और इस बार नाइटिंगेल अनुराधा पौडवाल के ब्यूटीफुल वॉइस में।

ये अति सुंदर बयान की रिश्ता ये मोहब्बत का। एक बार फिर लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के सांच पर और अल्फाज है राजेंद्र कृष्ण जी का।

रिश्ता ये मोहब्बत का निभाना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साइंस पर सुनाया आप सभी को नाइटिंगेल अनुराधा पौडवाल। अल्फाज थे राजेंद्र कृष्ण का फ्रॉम द मूवी आग का डरिया। तो मैं प्रिय श्रोताओं, सभी नगमे एडू फिल्म आग का डरिया मैंने आप श्रोताओं को सुना चुका हूँ। अब लेकर चलते हैं एक फिल्म जो रिलीज किया गया था 1991, फिल्म सौदागर। इस फिल्म में दिलीप साहब ने काम किया है महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर राजकुमार जी के साथ, मलकाए हुस्न मनीषा कोयराला और जैकी श्रॉफ भी इस फिल्म में काम किए हैं दिलीप साहब जी के साथ। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और लेखक है आनंद बख्शी। तो फिल्म सौदागर में से आप नगमे आप सुनेंगे इमली का बूटा बेरी का पेड़। ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनने को जा रहे हैं आप सभी को मशहूर गायक फ्रॉम द 80s 90s मोहम्मद अजीज और सुदेश भोसले।

अति सुंदर बयान, इमली का बूटा, बेड़ी का पेड़, एड फिल्म सौदागर, मोहम्मद अजीज और सुदेश भोसले की आवाज, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, अल्फाजे थे आनंद बख्शी का। राधा नाचेगी फ्रॉम द सेम मूवी सौदागर 1991, और इस बार भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी साथ दे रहा है, महान गायक फ्रॉम द 80s 90s मोहम्मद अजीज, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, अल्फाजे है आनंद।

Radha Nachegi from the movie Saudagar. Manisha Koirala-kaye, super hit movie with Dilip Kumar and Raj Kumar. Anand Bakshi ke alfaze, Lakshmikant Pyare Lal ke saaj. Aur gaane wale the Bharat Ratna Queen of Melody, Lata Mangeshkar aur Mohammad Aziz. Saudagar sauda karke dil ले ले दिल देकर, क्या बात है, ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनने को जा रहे हैं आप सभी को। तीन मशहूर गाने वाले ऐद यार निखंत, कविता कृष्णमूर्ति, सुखविंदर सिंह और मनहर उदास मिलके अति सुंदर बयान को गाए हैं। आनंद बख्शी का लिखा हुआ अति सुंदर बयान कंपोज बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

Bayan title song from the movie Saudagar Dil Lele Dil Dekar, beautiful song Kavita Krishnamurti Sukhwinder Singh Al Manhar Udas तीनों ने मिलकर अति सुंदर बयान को सुनाया आप सभी को आनंद बख्शी के अल्फाजे लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, वक्त हो गया है ना कुछ शेयर्स हो जाए हमारे शेयर्स के चाहने वालों के लिए। अर्ज किया है कुछ दोस्ती के बारे में, शेयर्स है यारो। खुदा ने अगर ये रिश्ता बनाया ना होता, एक दोस्त को मुझसे मिलाया ना होता, जिंदगी हो जाती हमारी बेजान। जिंदगी हो जाती हमारी बेजान अगर आप जैसे दोस्त को पाया ना होता। क्या बात, रब ने अगर ये रिश्ता बनाया ना होता, मेरी जिंदगी का कोई सहारा नहीं है, इस जहां में कोई हमारा नहीं है, छुआ उनका दामन तो वो हंस कर बोले, छुआ उनका दामन तो वो हंस कर बोले, दोस्त ये दामन तुम्हारा नहीं है। हर कली तुझसे खुशबू उधार मांगे, हर कली तुझसे खुशबू उधार मांगे, अफताब तुझसे नूर उधार मांगे, रब करे तू दोस्ती ऐसी निभाए, रब करे तू दोस्ती ऐसे निभाए के लोग मुझसे तेरी दोस्ती उधार मांगे। क्या बात, दोस्ती से बड़ी कोई जागीर नहीं होती, इससे अच्छी कोई तस्वीर भी नहीं होती, एक नाजुक प्यार का धागा है, एक नाजुक प्यार का धागा है दोस्ती, फिर भी इसे पक्की कोई जंजीर नहीं होती। गुनाह करके सजा से डरते हैं, गुनाह करके सजा से डरते हैं, जहर पी के दवा से डरते हैं, दुश्मनों के सितम का खौफ नहीं, दुश्मनों की सितम का खौफ नहीं, हम तो दोस्तों की वफा से डरते हैं। एक और हो जाए, दोस्त वो भी नहीं जो आपको त्रीत करे, दोस्त वो भी नहीं जो आपको त्रीत करे, दोस्त वो है जो आपके घर आए और कहे आज क्या पका है, जो भी है जल्दी से ले आओ, बहुत जोर से भूख लगी है। ये था कुछ दोस्ती के बारे में शेर शियारो। नहीं रुकती तेरी याद आती है, दर्द से भरा हुआ ये अति सुंदर बयान सुनने को जा रहे हैं आप सभी को भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी, और साथ दे रहा है महान गायक आईडियर तख्त निकतख द ग्रेट सुरेश वाटकर। अल्फाज है आनंद बख्शी का और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

रुकती तेरी याद आती है। अति सुंदर बयान, दिल को छू लेने वाला सॉन्ग सुनाया आप सभी को भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी, और साथ दिया महान गायक सुरेश वाटकर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर अल्फाज़े थे आनंद बख्शी जी का। हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूं यारो, कहीं जाना मत।

जिससे दूसरों का हित होता है वही कर्तव्य होता है, और जिससे किसी का भी अहित होता है वो अकर्तव्य होता है।

प्यारे प्यारे प्रभु भक्त आत्माओं, जैसे मैंने श्री रामायण के हर एक कांड में बतलाया कि ये राम कथा हमें प्रेम, त्याग और कर्तव्य का बोध कराती है, इसीलिए बार बार हमें श्री रामायण जी का श्रवण करना चाहिए। तो आइए शुभारंभ करते हैं श्री रामायण जी।

भक्तों, मोर के कंठ की आभा के समान नील वर्ण पीतांबर धारी हाथ में धनुष धारण करने वाले वानर समूह से युक्त देवताओं से सेवित स्तुति किए जाने योग्य जानकी जी के प्राण आधार रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के अवध में आने का एक दिन बाकी रह गया, परंतु अयोध्या वासियों के लिए ये एक दिवस युग के समान हो गया है। श्री रामचंद्र जी की प्रतीक्षा में कौशल्या, केकई, सुमित्रा, भरत, शत्रुघ्न एवं समस्त अयोध्या वासी सोच ही रहे थे कि श्री हनुमान जी ब्राह्मण वेश में आकर भरत जी को प्रभु राम के आगमन की सूचना देते हैं।

अयोध्या नगरी में विमान उतरने के उपरांत प्रभु श्री राम ने पुष्पक विमान को वापस कुबेर के पास जाने की आज्ञा दी। प्रभु ने सुग्रीव, अंगद, विभीषण आदि से अपनी पावन जन्मभूमि अयोध्या एवं पवित्र सरयू नदी की विशेषताएं समझाई। उधर जब अवध के निवासियों ने विमान से श्री रामचंद्र जी को उतरते देखा तो अपना आपा भूलकर श्री रघुराई की ओर दौड़ पड़े। श्री रामचंद्र एवं लक्ष्मण तथा सीता जी ने गुरु तथा माताओं के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद दिया। भरत जी श्री रघुराई राम के चरणों से ऐसे लिपट गए जैसे सुंदर से वृक्ष पर अमर बेल लिपट जाती है।

भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रिय भक्तजनों, फिर शुभ मुहूर्त विचार कर कुल गुरु वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक का आदेश दिया। मंत्री सुमंत जी को बुलाकर सभी जगह निमंत्रण भेजने को कहा। अयोध्या नगर को दुल्हन की भांति सजाया गया। अभिषेक हेतु सातों समुद्रों एवं समस्त तीर्थों से जल मंगाया गया। माता कौशल्या केकई सुमित्रा फूले नहीं समा रहे। भरत जी ऐसे प्रफुल्लित हैं मानो विष पान के बाद किसी को प्राण दान मिल गया हो। राज्य अभिषेक की सभी तैयारियां पूर्ण हो गई हैं।

ब्रह्मा शिव एवं इंद्र आदि देवगण श्री रामचंद्र जी की स्तुति करने लगे। हे हरि, हे दीनानाथ, आपकी माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, चराचर, जीव, कर्म और गुणों से भरे हुए भी आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे प्रभु, जिन पर आपकी कृपा दृष्टि होती है वे तीनों प्रकार के दुखों से छूट जाती हैं, परंतु जिन्होंने अभिमान में आपकी भक्ति का आदर नहीं किया वे ऊंचे पद पर रहकर भी अपने वास्तविक पद से नीचे गिर जाते हैं। जो श्री चरण श्री लक्ष्मी जी द्वारा सेवित हैं, हम उन चरणों में

श्री रामचंद्र जी के प्रिय भक्त जनों, जानकी वल्लभ मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक हो चुका है। चारों ओर श्री रामचंद्र जी की जय के शब्द गूंज उठे। प्रकृति मानो नृत्य करने लगे। देवगण आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। विप्र वृंद वेद मंत्रों का गान कर रहे हैं। जहां तहां शंख और घंटों की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। फिर सायकाल में जब उत्सव समाप्त हुआ, तब श्री राम प्रभु ने विभीषण अंगद एवं समस्त वानर दल के ठहरने की उचित व्यवस्था करवाई।

भक्तजनों, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अंगद को प्रेम पूर्वक समझाकर उनके आराध्य को भेज दिया एवं नीति धर्म मर्यादा का पालन करते हुए राज्य का संचालन करने लगे। उनकी देखरेख में अयोध्या राज के समस्त निवासी सुख पूर्वक रहने लगे। उनके राज्य में कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था थी। छोटे बड़े, धनवान निर्धन का कोई भेदभाव नहीं था। कहीं चोरी ठगी झूठ कपट का व्यवहार नहीं था। कभी कभी तो अयोध्या की खुशियों से देवगण भी ईर्ष्या करने लगते थे।

एक दिवस सुंदर अवसर जानकर श्री हनुमान जी ने करुणा निधान श्री रामचंद्र जी से कहा, हे प्रभु, श्री भरत जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। श्री राम की अनुमति पाकर श्री भरत जी बोले, हे प्रभु, आपने वेद एवं पुराणों की बड़ाई की है, मैं संतों और असंतों के लक्षण जानना चाहता हूँ। तब श्री रामचंद्र जी बोले कि हे भरत, संत और असंतों की करनी ऐसी होती है जैसे चंदन और कुल्हाड़ी का आचरण। संत विषयों में लिप्त नहीं होते, कटु वचन नहीं बोलते तथा नियम और नीति से विचलित नहीं होते।

सुप्रिय भक्तों, इसी प्रकार एक दिवस राजसभा में गुरु ब्राह्मण मंत्री आदि बैठे हुए थे। तब प्रभु श्री राम बोले, मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, अच्छी लगे तो अनुसरण करना। यह मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला है, इसे विषय भोगों में मत खोना। जो इस अवसर को खो देता है वह फिर 84 लाख योनियों के चक्कर लगाता रहता है। जो मानव चोला पाकर मुक्ति का साधन नहीं करता वह आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। जगत में एक ही पुण्य है, मन कर्म वचन से सिद्ध संतों के चरणों की सेवा करना।

सज्जनों, तब शिव जी बोले, उमा सुनो, जब दक्ष ने तुम्हारा अपमान कर दिया और तुमने प्राण त्याग दिया, तो मैं निराश हो सुमेर पर्वत के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी वृक्ष पर काक मुशुन्नी रहकर श्री हरि का गुणगान करता था। मैं हंस का शरीर धारण कर उसके पास गया, तभी गरुड़ जी भी वहां आ गए। गरुड़ जी ने काक मुशुन्नी जी से कहा कि हे काक मुशुन्नी जी, मुझे भी अपार सुख देने वाली पवित्र कथा सुनाओ। तब काक मुशुन्नी जी ने गरुड़ को श्री

प्रिय भक्त आत्माओं, काक मुसुंडी जी कहते हैं कि कलयुग में किसी भी जन्म में जो अवध में बस जाता है वो श्री राम जी के परायण हो जाएगा। परंतु काल का ऐसा प्रभाव था कि सभी लोग मोह के वश में हो जाती है। इस युग में पंडित वेदों को बेचने वाले, राजा प्रजा को ही खाने वाले होते हैं। कलयुग में पंडित वही होता है जो आडंबर रचता है, शुद्र ब्राह्मणों को उपदेश देते हैं, स्त्रियां पर पुरुष का साथ करती है और पुरुष पर स्त्री का साथ करते हैं। सिद्ध ब्राह्मण तथा सिद्ध गुरु की हत्या होती है, अनेकों शिष्य पापी होते हैं। अर्थात कलयुग में चहु

प्रिय भक्तों, काकभुशुंडी जी बोले, हे पक्षीराज, उस कली काल में मैं अयोध्या में रहा, परंतु अकाल पड़ने पर मैं कहीं और चला गया और शिव की पूजा करने लगा। वहां एक दिन मैं पूजा कर रहा था और मेरे गुरु जी आ गए। मैंने उनको देखकर भी प्रणाम नहीं किया, अर्थात मुझ जैसे मूढ़मति अज्ञानी ने गुरु का अपमान किया। उसे गुरु तो सहन कर गए, परंतु देवाधिदेव शंकर भगवान ने क्रोध करके सर्प बनकर पेड़ की खोखड़ में जाकर रहने का श्राप दिया। हे पक्षीराज, मेरे जैसे मूढ़ अज्ञानी के लिए यही दंड उचित था।

हे गुरुजी, जब लोमस ऋषि से मैंने ब्रह्म के विषय में पूछा तो उन्होंने मेरी चतुरता एवं अधीरता पर क्रोध करके मुझे फिर से कौवा बनने का श्राप दिया। मैं कौवा बनकर उड़ चला। मुझे अपना ये काक शरीर इसलिए पसंद है कि मैंने इसी रूप में प्रभु श्री राम के दर्शन पाए थे और सब लीलाएं देखी थी। फिर गरुड़ जी ने काक भुशुंडी से पूछा कि ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है। सज्जनों, तब काक भुशुंडी जी ने बड़े प्रेम से गरुड़ जी को ज्ञान और भक्ति का भेद समझाया।

भक्त वत्सल सच्चिदानंद स्वरूप परम पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के अतिशय प्रिय भक्तों, काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को भक्ति ज्ञान वैराग्य के अनेक भेद बतलाए। उन्होंने मानव शरीर को सर्वोत्तम बतलाया, क्योंकि मानव को प्रभु ने बुद्धि विवेक चेतनता प्रदान किए हैं। स्वतंत्र रूप से कर्म करने योग्य केवल मनुष्य शरीर है, परंतु यदि कोई मनुष्य तन पाकर भी पशुओं की भांति आचरण करता है तो इसमें प्रभु का अथवा अन्य किसी का क्या दोष। अतः मनुष्य को मोह माया से ध्यान हटाकर श्री राम प्रभु के चरणों में ध्यान एकाग्र करना चाहिए।

प्रभु प्रेमियों, इस उत्तरकांड की विशेषता यही है और इससे यही शिक्षा मिलती है कि प्रभु की परम कृपा से यह मानव शरीर मिला है। इसको यूं ही अहंकार और भौतिक सुखों में व्यतीत कर दिया जाए तो फिर हमारा चारों तरफ से पतन ही पतन, मतलब हानि ही हानि है। भगवान शंकर हमें ये खुद समझा रहे हैं कि मानव शरीर पाकर जो दुराचारी बना उसकी गिनती अधम में यानी पापियों में होती है। प्रभु का ध्यान, प्रभु की भक्ति मानव के लिए सुरक्षा कवच है। प्यारे प्यारे प्रभु भक्त आत्माओं, मैं आपका गोपाल परदेसी बाबा, जिसने आपको श्री रामायण के सातों कांडों का हृदय से भाव विभोर होकर सरल रूप और भावपूर्ण तर्ज में श्रवण कराया, इस श्री रामायण को इस सरल रूप में आपके सामने रखने की मेरी यही अभिलाषा है कि आज के समय के युवा वर्ग भी इससे प्रेरित हो और अपने जीवन को मंगलमय व आनंदित बनाए। इस श्री रामायण गाथा को पूरा करने में मेरी अर्धांगनी राधा जी का विशेष योगदान रहा है, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से ये सब संभव हो पाया है। सज्जनों, अगर इस गाथा को श्रवण कराने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं आप सभी भक्तों से क्षमा चाहता हूँ। मैं आपका सेवक, भजनिक और उपदेशक गोपाल परदेसी बाबा फ्रॉम नीदरलैंड

0: शिव शिव भोले जा भोले जा, और बोलते ही चलते जाना, आगे ही बढ़ते जाना। क्या मिलिए ऐसे लोगों से,
1: क्या मिलिए,
0: क्या मिलिए ऐसे लोगों से, मोहम्मद रफी जी की आवाज में।

माता जी, माँ पहला सच्चा प्यार, माँ पहला और सच्चा प्यार। आजकल सोशल मीडिया की शायरी हो या किसी की पर्सनल डायरी हो, सब में पहला प्यार का ही जिक्र करते हैं लोग। सब ने पहला प्यार का जिक्र करते हैं लोग। घर परिवार जाए भाड़ में, पर यार की फिक्र बहुत करते हैं लोग। कहते हैं पहला प्यार भुलाया नहीं जाता है, पहला प्यार भुलाया नहीं जाता है। चाहकर उसको रुलाया नहीं जाता, फिर क्यों सवाल उठता है, फिर क्यों उस माँ के पहला प्यार को भुला देते हैं लोग। पहला प्यार भुलाया नहीं जाता, चाहकर भी रुलाया नहीं जाता, फिर क्यों उस माँ के पहले प्यार को भुला देते हैं लोग। जो जीते हैं सिर्फ तेरे लिए उसी को क्यों रुला देते हैं लोग। माना इस दुनिया की नज़र में पहला प्यार रांझा और हीर था, मगर उस माँ का प्यार तो तब से था जब तुम उसके गर्भ में सिर्फ एक लकीर था। माँ पहला और सच्चा प्यार।

किशोर दाजी की आवाज़ में हम यहाँ से और सुने हैं कि आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, वो सदा ही उनका पीछा ही करता है। फिल्म मजबूर से निकाला गया है ये सुंदर सा गीत।

बचपन का यार, बुढ़ापा का बुखार, हमेशा दिल में ही रहता है। दुश्मन का चांटा सीधे दिल में चुभता है। माँ की डांट और झापर, बाप के थप्पर जीवन की राह सिखाती है। नाना नानी का दुलार, दादा दादी का प्यार, हमेशा याद आएंगे।

में अगर जंग लगी उम्मीद, उम्मीद में अगर जंग लगी, नाकामी संग लगी, बर्बाद कर देते हैं ये दोनों। जुए की आदत, शराब की लत कहीं का नहीं छोड़ते। मैं कहती हूँ खुश रहो, सलामत रहो, जी भर मुस्कुराओ। पत्थरों का नहीं बल्कि फूलों का घर बनाओ, फूलों से अपना घर सजाओ। इस बार सुनेंगे रास्ते का पत्थर से।

The song यहाँ से हमने सुने दर रास्ते का पत्थर नेकदिन 1952 में ये पिक्चराइज किया गया है किशोर दा जी की आवाज़ में।

सोचने वाला बात है और थोड़ा कठिन लगेगा सुनने के लिए, पर सच होगा, सच ही है। एक बुजुर्ग ने सच कहा है कि औरत ही औरत के दुश्मन होती है। अगर दुनिया भर की माँ अच्छी है तो फिर सास में बुराई कैसा, अगर दुनिया भर की माँ अच्छी है तो सास में बुराई कैसे, अगर बेटी के दुख से दिल दहलता है तो फिर बहू के दुख में सुकून कैसे, और अगर ननद का घर में आना भाभी को चुभता है तो भाभी का मायके जाना सही कैसे। हमारी माँ बहनों को थोड़ा सा सोचना चाहिए।

जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता, और जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच, इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा जो है उसे जीवन कहते हैं।

उसे है प्यारा, सुना दी हमको किशोरदा जी और साथ दे रहे थे अनुपमा फिल्म के नाम काश काश। फिल्म काश जो 1983 में पिक्चराइज किया गया है। आप सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।

0: बहुत दूर से तुम्हें लेने आया हूँ, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें मेरे भोलेनाथ। और आपको पता है सभी लोग मुझे पागल पागल कहते हैं, पर अब तो आप मिल गए हो ना, मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा। और चिंता मत करो, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा। अब जहाँ शंकर होंगे वहीं शेखर होगा।
1: अरे ये कौन है? ये पागल है।
2: अरे पागल है तो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं शिवलिंग के साथ? निकालो इसे मंदिर से बाहर।
1: पागल है।
2: निकालो इसे मंदिर से बाहर।

मेरा हाथ थाम ले, भोले भोले मेरा हाथ थाम ले, हाथ थामे और कभी छोड़ना नहीं, क्योंकि आप राह चलाने वाला है। माँ खुशियों के ज़मीन होती है, माँ खुशियों की ज़मीन होती है, माँ बच्चों के लिए भगवान होती है। देख के अपने औलाद के आँखों में आंसू, देख के अपने औलाद के आँखों में आंसू, खुद भी जो अपनी आँखें भिगो ले, वो माँ ही होती है।

हिमेश रेशमिया के साज और संगीत में यहाँ से हमने सुने ये सुंदर सा गीत ऐ मेरी वफा। एक हस्ती है जो जान से है प्यारी, एक हस्ती है जो जान से है प्यारी, जो जान से भी बढ़कर शान है हमारी, वो कोई और नहीं, वो

बतला इस जन्म में तो क्या। जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, माँ का प्यार का माँ का प्यार माँ के प्यार का बदला इस जन्म में तो क्या। अगर हजार जन्म भी लूँ तो उतार

एक बार फिर यहाँ से हम हिमेश रेशमिया के साज और संगीत में सुनेंगे। आपका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से

0: माँ के दिल को समझना, एक माँ के दिल को समझना थोड़ा मुश्किल है। चाहे सुख दे या दुख दे बच्चा, रहते हैं सब सिचुएशन में शामिल।
1: यादों से भीगा हुआ मेरे दिल का हर एक कोना है, तेरे पहलू में सर रख के जी भर के रोना है।

जय जय राम, जय जय श्री राम, जय जय हनुमान। सुंदर हनुमान चालीसा आपके लिए प्रस्तुत किया गया है और कहते हैं कि परमात्मा दोनों तरह से आजमाता है, परमात्मा दोनों तरह से आजमाता है, देकर भी और लेकर भी। सभी को सुप्रभात। सुप्रभात जिंदगी का हर पल, जिंदगी का हर

को ये सुबह शुरुआत करने से ऊर्जा लेकर और शुरुआत करना है, मन की शांति प्राप्त करने के लिए पावरफुल ये जीवन जो है और ये दिन भी रहे। रिश्ते वही श्रेष्ठ है मेरे दोस्त, रिश्ते वही श्रेष्ठ है जिसमें शब्द कम और विश्वास ज्यादा हो। जी हाँ, आपने सुने हैं कि रिश्ते वही श्रेष्ठ है जिसमें शब्द कम और विश्वास ज्यादा हो, अहंकार कम और प्रेम ज्यादा हो। मन की सोच सुंदर हो तो सारा संसार सुंदर है। बात भी सही है मेरे प्यारे प्रिय प्यारे भक्त प्राणियों कि मन की सोच सुंदर हो तो सारा संसार सुंदर है। और ये भी कहते हैं कि लोग कहते हैं कि ये खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। सुनो एक बार फिर कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, पर बात ऐसा नहीं है, बात ऐसा नहीं है। लोग भाग्य लेकर आते हैं, आप और मैं हम सब भाग्य लेकर आते हैं और कर्म लेकर और जाते हैं। हम भाग्य लेकर आते हैं और कर्म जो हम करते हैं वो कर्म हम

वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सुंदर सा गणेश भजन यहाँ से श्रवण की है, पावरफुल पावरफुल भजन आपके लिए, ताकि आपका दिन वो अच्छे से और प्रेम से मुस्कान से शुरुआत होवे। ये बात मैं आपसे बताना चाहती थी कि सुबह का हर एक पल, सुबह का हर एक पल का आशीर्वाद, हर एक पल हाँ भगवान का आशीर्वाद होता है। सुबह का हर एक पल भगवान का आशीर्वाद होता है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे सुनने वालों, हाँ भगवान का आशीर्वाद होता है। इसे हंसते हुए जिए, हाँ इसे हंसते हुए जिए और अपने दिन को शानदार बनाओ। क्योंकि मेरे दोस्तों दिल थोड़ा से छू जाता है ये बात कहने के लिए कि ऐसे कितने हमारे जीवित प्राणी हैं जो सुबह को फरवेल कॉम नहीं कर पाते हैं। आप ये सुबह देखे हैं, आप बहुत खुशकिस्मत वाले हैं। या न्यू हुय मोर्ख सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, बस हंसते हुए चेहरे पे बड़ी सी स्माइल से इसे स्वागत करो। और कहते हैं कि ईश्वर देता है उसी को जो बांटना जानता है। हाँ ईश्वर देता है उसी को जो बांटना जानता है, फिर चाहे वो धन हो या खुशी।

हर हर हर हर महादेव। हे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, सबके प्रभु से यही प्रार्थना है कि आपकी, हे मेरे ईश्वर, कि आपकी कृपा, आपके कृपा से एक नई सुबह देखने का सौभाग्य मिला है। हम सब कितने खुश नसीब हैं कि आपका आभार मेरे सभी सुनने वालों के सभी मित्र, सभी संबंधी खुशी रहे, स्वस्थ रहे, हम सब स्वस्थ रहे, हम सब खुशी रहे और उनकी दीर्घ आयु होवे। हम सबकी दीर्घ आयु रहे, स्वस्थ रहे, संबंधी सभी जो है खुश रहे। ईश्वर आपकी, हाँ ईश्वर आपकी हम सबकी हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे और सभी दुख जो है वो दूर होवे। यही प्रार्थना है ईश्वर से, यही प्रार्थना है भगवान से कि हम सबको सुख शांति प्राप्त कराएं।

अति सुंदर अति सुंदर दिल को छू जाते हैं, तार तार जो है वो सब हिला देते हैं। इतनी सुंदर यहाँ से आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है ये सुंदर सुंदर सा भजन, मिटाने से मिटे नहीं ये भाग्य के लेख, मिटाने से मिटते नहीं ये भाग्य का रेखा, कर्म अच्छा तू करना कर्म अच्छा तू करता चल, हाँ कर्म अच्छा तू करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख तो फिर ईश्वर की महिमा देख, दर्द ना होता।

खूबसूरत सवेरा आपको हम सबको बधाई है। नई सुबह, नई किरण, नई आशा लेकर आई है, नई उम्मीदें, नई रास्ता। ये जहां एक दिन नहीं, ये मजह, ये पल एक दिन नहीं, आपके सपनों को साकार, हाँ आपके सपनों का साकार करने एक और मौका मिला है मेरे दोस्त। आपका पल सुखद, सुखद में सुंदर एवं खुशियों से भरा रहे। हम सबके पल जो है वो खुशी, सुंदर एवं

को ये दिन ये पल ये सुबह बहुत सारे बधाइयाँ हो। शुभ प्रभात आप सभी को। उदय उदय किसी का भी अचानक नहीं होता है। हाँ, उदय किसी का भी अचानक नहीं होता है। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है मेरे दोस्त। हाँ, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है। ऐसे ही मेहनत करने से भी हम धीरे धीरे भी आगे बढ़ते हैं। और हाँ, धीरे धीरे सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है, हाँ, धैर्य और तपस्या जिसमें है, वही संसार का प्रकाशित कर सकता है, जैसे कि आप। जी हाँ, आप में धैर्य है, आप में धैर्य है, आप में तपस्या है। यू हैव अ विल ओम दूर तखान ओम दूर तबरेकन द बेंट यू हेलमाल ऑफ द यूस्ट वेग एन दार बै हैव यू ओक द kracht van uw lieve Heer bij. En dan kunt u zelf zien hoe gelukkig u op den duur kunt zijn. En het enigste is doorzetten, gewoon doorgaan. In alle positieve dingen.

सुप्रभात मेरे दोस्तों, सुप्रभात मेरे प्यारे प्यारे भक्त प्राणियों। जीवन की हर सुबह एक नया अवसर है, जीवन की हर सुबह एक नया अवसर है, इसे अपनाओ। हाँ, इसे अपनाओ और अपनी खुशियों को बिखेर दो। हाँ।

Wij zijn allemaal gezegend. Ja, en dan wensen wij u ook vanuit Fahun Hindustani Radio een gezegend dag. Nieuw begin. Nieuwe kansen. Nieuwe lach. हंसता वही है मेरे दोस्त, हाँ हंसता वही है जैसे आप हंसते हैं, जो दुनिया से नहीं बल्कि अपने आप से हार जाता है। आपका आज, आज आपका आज हमेशा खुशहाल और सुखदमय रहे। हाँ आपका आज, ऐसा ना सोचो कि आज आज नहीं, अभी कुछ पल के बाद भी आप कहोगे कि आज का दिन, एक घंटा के बाद आप भी कहोगे आज का दिन, रात में होगा तो भी कहेंगे आज के दिन, आज की रात, क्योंकि ये आज कभी जाता नहीं, कल कभी आता नहीं, हाँ कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं।

द सॉन्ग जो हमने मिलकर और सुने हैं सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का नाम भी यही है और लता जी की आवाज़ में हम सबने और प्यार के साथ सुने हैं आज इस खूबसूरत दिवस में। हर पल में प्यार है लीफल स्टार्स, हर पल में प्यार है, हर पल में खुशियां हैं, जी लो तो जिंदगी है, खो दो तो यादें हैं।

0: मैं कहती हूँ हरदेव जो प्यार करेगा वो गाना जरूर से गाएगा, अगर जोर से नहीं तो जरूर से गुनगुनाएगा, मन में मुस्काएगा। तो सुंदर सा गीत यहाँ से इस कार्यक्रम में आपके लिए चुन चुन कर और लाया गया है, तो यहाँ से हम सब मिलकर और इसी ही तरह सुनते ही चले जाएंगे। हम आपके लिए यहाँ से चुन के रखी हूँ, सुने वालों, तुम जो मिल गए हो, और ये गाए हैं ऋषि नित्य प्रज्ञा। जी हाँ, ऋषि नित्य प्रज्ञा, ये सुंदर सा गीत जो कॉफर किया गीत है वो गाए है, तो हम यहाँ से सुनेंगे उनकी आवाज में।
1: क्रेजी डिवोटी के पागलपन की पराकाष्ठा। आई डोंट थिंक एनीथिंग एल्स नीड्स टू बी सेड अबाउट दिस सॉन्ग।

नित्य प्रज्ञानंद से जो हमने यहाँ सुने सुने वालों, और ये गीत जो अपने डिवोशनल, हाँ डिवोशनल ट्यून में जो हम सब के दर्शाया है, तो सुंदर लगा कि एक गीत भी आप कई रूप से इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं और लगा सकते हैं किसी तरह में, जैसे कि प्रभु से जोड़ सकते हो या अपने प्रेमिका या प्रेमी से जोड़ सकते हो या कोई भी।

0: एक और सुंदर सा गीत जो उनके मुखारविंद से हम यहाँ से सुनेंगे ऋषि प्रज्ञानंद की आवाज में।
1: ज्ञान चर्चा करता हूँ, ध्यान करता हूँ खुद और सिखाता हूँ लोगों को। सेवा का समय हो तो भरपूर सेवा भी है, लेकिन मेरे जीवन को बड़ा सुंदर बनाने वाला है जो भक्ति का गाने का एक जो रस गुरु कृपा से जो मिला है, मुझे बड़ा ब्लेस्ड फील होता है कि मैं गा पाता हूं। मेरे गुरु जी का

लिए ट्रेंड गला तो है नहीं, तो सुरों में कई बार ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन जो भाव मन से निकलता है वो मुझे लगता है आई फील सो ब्लेस्ड सो दैट आई एम एबल टू गिव सच हैप्पीनेस सच जॉय सच डिवोशन टू पीपल अराउंड मी। इस गाने के जो शब्द हैं, तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, आई फील दिस इज द स्टोरी ऑफ माई लाइफ टू।

ऐसे सुनने वालों, आप सुनते हैं कि गीत जो है तो आप जैसे हमने कहा है, कही है कि आप अपने इश्क की भेंटी भी कर सकते हैं, अपने प्रेमिका प्रेमी के, या जो जो जिस समय पे आपके दिल के पास हो आप उनके लिए गा सकते हो, पेश कर सकते हो।

अपनी जमीन, अपनी जमीन, अपना नया आसमान पैदा कर। मांगने से जिंदगी में कब मिलती है, मांगने से जिंदगी में कब मिलती है, खुद खुद की अपना नया इतिहास बस पैदा करो। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, कुछ ऐसा करो कि आप जान पहचान में बने रहो। तो यहाँ से हम इस बार सुनेंगे पंकज उदास जी की आवाज़ में कि निकलो ना बेनकाब

तो पंगज उदास जी ने कहते हैं कि निकलो ना बेनकाब, जमाना खराब है, तो ये आप पर निर्भर है कि आप नकाब या बेनकाब पर चलते हो। आप इस पर भी कपड़े डाल सकते हो या बगैर कपड़े यानी कि नकाब यानी चेहरा ढक कर, और भी ऐसे भी सोच सकते हैं कि अपना चरित्र पे भी आप पर्दा करते हो या ना पर्दा करते हो, आपका व्यवहार कैसा है, ये इस पर आप कैसे आप इसे कॉन्टेस्ट देते हैं, तो ये आप पर निर्भर है ना। ख्याल ओक फॉर मई तुर्लक।

मशहूर फनकार पंकज उदास से हमने सुने, तो ये इनकी इनकी सवालों का जवाब तो मैं तो ये देना चाहती हूँ कि बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को कोसो मत, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। इस बार हम सुनेंगे भाई बहन के आवाज में नेहा और तोनी कक्कर के।

आकाशवाणी के प्यारे प्यारे सुनने वालों, दोस्तों, भाई बहनों, जान पहचान वालों, आप सभी को हार्दिक से स्वागत है। आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। रिश्तों को वक्त देना सीखो, प्यार भी रहेगा और साथ भी रहेगा। मैं हूँ आपिका सेविका शांता, स्वीकार कीजिए मेरी प्यार भरी राम राम, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, राधे राधे, नमस्कार हो जी।

सुनने वालों, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, जो को प्यार हो जाता है तो चलते फिरते बस कुछ गुनगुनाते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, तो आप उनको मुस्कान देखकर, उनके चेहरा देखकर आपको पता हो जाता है ये कहूँ दिल बैठे बैठा है। ऐसे ही होता है सुनने वालों, हर दिल जो प्यार करेगा वो ज़रूर से गाना गाएगा। संगीत और संगीत के प्यारे सुनने वालों, ये आप ही के लिए सब गीत चुनकर और रखी हूँ।

मेरे सनम, आपको तो पता चल गया होगा कौन सा फिल्म है। जी हाँ, फिल्म संगम से हम यहाँ से आपके लिए ये सुंदर सुंदर गीत निकाल रखी हूँ और इस बार चलेंगे कि बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं तो मैं ज़रूर कहूँगी ज़रूर से होगा।

जरूर से होगा, संगम जो जरूर से होगा, इसमें कोई सोच के बात नहीं है। आपको तमाम खुशियाँ और खुशनसीबियाँ पेश किया जाता है आपका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से, और यहाँ पर आपके लिए चुन कर रखी हूँ वही मशहूर फिल्म संगम से ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर।

आप ही के दिल के पास, आप ही के गुजारिश में ये सुंदर सा गीत आप ही के लिए चलाया जाता है आप ही का फोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। खुद को खुद ही खुश रखे, खुद को खुद ही खुश रखो, ये जिम्मेदारी किसी और की नहीं बल्कि अपने आप का है, आप ही का है कि आप अपने आप को खुश रखो।

जिंदगी दो पल की है सुनने वालों, जिंदगी दो पल की है, मजे में जी लो, मजे में जी लो, वक्त वक्त की बात है यहाँ सब ऐ मेरे दोस्तों, इसलिए कल को छोड़ो और आज में ही जी लो, जी हाँ आज में ही जी लो।

वही मशहूर फिल्म संगम से मुकेश साहब के आवाज में, दोस्त दोस्त ना रहा।

राज कपूर, राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा ने मालविजयंती माला जी इस फिल्म में मिलकर और अपना कमाल दिखाई है। तुम खफा हो गए तो कोई खुशी ना रहेगी, तुम खफा हो गए तो कोई खुशी ना रहेगी, तुम्हारे बिना चिरागों में रोशनी ना रहेगी। क्या कहे क्या गुजरी इस दिल पर, जिंदा तो रहेंगे पर

0: हम पर सपना लाओ, अब जो मिलना।
1: अच्छा जी,
0: अब जो मिलना बांध के सहरा ही मिलना सरकार।
1: तो अगले इतवार
0: जी सरकार।
1: अच्छा है त्योहार।
2: अगले इतवार, अगले रविवार का पता नहीं कब मिलेंगे, पर मिलना जरूर। बाबुल की गलियां, बाबुल की गलियां फिल्म के नाम, ये सुंदर सा गीत आपके लिए पेश किया गया है। और कहते हैं, हाँ कहते हैं कि हेट लेवन इज अ सर्कल फन गेलुक फरद्रित मोइलक तैदन, एन नतुरलक गेलुकिगे तैदन। Als je een moeilijke tijd doormaakt, onthoud dit zeker. Dan staat er vredige momenten. Ja, vredige momenten zullen zeker en nog eens zeker komen.

आपने सुने कि चला चल लिफाफे कबूतर। जी हाँ, कबूतर और लिफाफे यानी कि एनवलप पर भी यहाँ पर गीत आपने सुने, और ये गीत आपके लिए चला दिया गया है फिल्म दीदारे यार से, हाँ, किशोर दास जी की आवाज़ में, और ये पिक्चराइज किया गया है नेखंतीन त्वेयन तख्त में।

अवश्य अवश्य कभी न कभी तो फंसेगी मेरी जाल में, इस बार महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में। हाँ, खोजने पे पता चल गया है कौन सा फिल्म है। फिल्म का नाम मोती। हाँ, फिल्म मोती से महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में। और क्या कह रहे हैं आज के वक्त में, आज के वक्त में ये कहते हैं कि नेम फंदाख लिफ द मे, neem vandaag liefde mee in je hart, vrede in je gedachten en vertrouwen op je pad. Ja, en met zeker met Gods rijkste zegen, God bless you, ja. Yeah.

रेडियो आपके पुराने ताजा पुराने यादें ताजा करा देते हैं। किशोर दा जी और लता जी के आवाज में यहाँ से श्रवण की है।

सो ग्रेट, सो स्वीट, तुमको हमारी उम्र अलग जाए, ये गीत आपके लिए पेश किया गया है, देखे तो लता जी की आवाज़ में, जी सुरेली आवाज़ लता जी के, और फिल्म का नाम है आई मिलन की बेला। निकटे फिर सस्तक में ये पिक्चराइज किया गया है, इसमें स्टार कास्ट है राजेंद्र कुमार, शायरा बानो, शशिकाला, धर्मेंद्र जी। और ये सुंदर सा गीत पेश किया गया है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से सुतमेर के रहने वाले श्रीमती माला जी के वास्ते।

2:30 हो चला है, 2:30 हो चला है। आज शनिवार के सुबह की कार्यक्रम, हाँ अभी सुबह है क्योंकि आधा मिनट बाकी, आधा घंटा बाकी, आधा मिनट कहाँ, आधा घंटा बाकी है 12 बजने में। मेरे प्यारे सुनने वालों, आपके लिए यहाँ से थोड़ा से हम चेंज ला देते हैं।

मैक्सिकन टैप रिमिक्स, उसी धुन पे ये ख्वाब हो तुम गा दिया गया है और वही रिदम में हम यहाँ सुने हैं। इस बार लेकर चलते हैं फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा दिजेश शेरी रिमिक्स कांची रे कांची रे।

रुक जा न जा दिल तोड़ के, साथ निभा ले मेरे यारे समझ बूझ कर, और जहाँ तेरी नजर है मुझे ये भी खबर है। इस बार है लातिनो रिमिक्स।

बार था लातिनो रिदम म्यूजिक रिमिक्स जहाँ तेरी ये नजरें फिल्म कालिया और किशोर दा जी जो गाए हैं। इस बार है मैंने लिवा मैं से नोख इन केर लातिनो स्टाइल हिंदी कवर सॉन्ग मस्त बहारों का तू है आशिक।

11:05 गुजर गया है। शनिवार के सुबह की कार्यक्रम आपके लिए इस वक्त के लाइव पेश हो रहा है।

मियाँ बीबी दोनों बैठकर और दिल रेडियो के करीब होकर दिल लगाकर रेडियो को फॉलो करता है। खालिद और रुखसाना वागित हुसैन उनके लिए पेश हो रहे हैं। सुंदर सा गीत ये भी लव रिमेक्स है। बहुत प्यार भरा गीत लव रिमेक्स आजा पिया तो ये प्यार दूं।

वेरी स्वीट ब्यूटीफुल प्यार भरे गीत आपके लिए, माय गॉड माय ब्लोइंग। और ये सुंदर सा गीत पेश किया गया है रुखसाना और खालिद, ये दोनों मियां बीबी रेडियो के करीब होकर और रेडियो को फॉलो कर रहे हैं दिल से।

इस बार है वादा कर ले साजना, सोलफुल मोहम्मद रफ़ी और लता जी के आवाज़ में ये रिमिक्स फिर से आपके लिए।

शो टाइम, बचपन की मोहब्बत माई रो, सूरज की आवाज में यहाँ से आपने सुने पूरा एक वक्त है। इसका मतलब है यहाँ से मैं आपसे आज के लिए रुखसत हो रही हूँ। मेरे प्यारे सुनने वालों, देने सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद किया जाता है। ये आशा उम्मीद है कि आपको आने वाले दिनों में ज़रूर से मौका मिलेगा यहाँ पर उपस्थित रहकर और आपके सेवा करने के। तब तक आप अपना ख्याल रखना, दुआ प्रार्थना में मेरी को भी याद करना। अनहेल खुय दाख मुय दाख ये नमाज फाइन दाख

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जांच, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फान के सुनने वालों को हमारा राम राम, नमस्कार, प्यार भरिए नाम, सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज का देश और विदेश के समाचार को सुनाना है और वो है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम।

तू दीवाना के बाद हम तुरंत चलते हैं भैया सूरीनाम देश में। हम लोग जानते हैं कि नीदरलैंड में अन्य देश में होंक बाल बड़ा जोर हुए भैया अमेरिका का खेल है, लेकिन सूरीनाम में भाई होंक बाल कुनेपल से मारी से गो ई भाई करके बड़ी दुख के बात है भैया। बाल खेले वाला चीज से और मारी से आप लोग को पता है दोस्तों कि यहाँ नीदरलैंड में यमा निक्स इन ये कॉफर में नहीं। सूरीनाम में सबन कटलीस लेक चरे

Toen kwam hij dat hij bal kreeg die oma permanent reed, dan krijg je gewoon een boete mensen. Zo is het. Maar in Suriname hebben we verwacht dat die honk, bal, knuppel, kooi, marie, ze bhaiya, ego, die biker die lili dorp weg gebaat is, hamari mausi. Toen ego, bole hai, ego, die biker, bole hai, ga lili dorp weg me bhaiya, chotai ge hai, bole kharaak bhai, een poging tot beroving, honk, bal, se koi beroof karta bhai ko khamas kar da man au kar haath mein na pistol la na chhuri ra na katli se raha mausi ओकर हाथ में रहा और कुनेपल ला भैया और ओही से भैया मारी से ई बाई करवा के मारी से और बोले मारवेश निच बैठ तमा कर मारी तो बकीना ओकर ई बाई को चुराई पाए इसने कुछ ले के भाग पाए बकी दमियान चोटाई गए भैया चोटाई गए है बोले हैगा 11 बजे रात के बात है एक सब बरूफ करी से बोले कर वेल है स्लाख तो फिर ओकर मुड़ी वेल फड़ के भैया मुड़िया पे मारी से और ई बाइकर चोटाई गए है हमारे मौसी ते जो कोई देखियो होंग बाल लेके चले तना सोचे हो जा बाल खेल उसे सुरीनाम देश में सब रो भी करे लगल है उन दंग से खबरदार इंसिडेंट स्लाख द फरदख्त एंड नीट इन इट्स वेक te nemen. Oh, dus ik ben voorlopig niet op de Facebook live, want ik heb het eerder doorgegeven dat Hamara Facebook ze hebben gehackt. Ik heb een nieuwe account gemaakt. De account is wel actief, maar met dat Facebook ke hai, het is regels van hun dat je 2 maanden een account moet hebben, dan pas kan je live gaan. Dus het duurt het even mensen, voordat dat ik weer live op het Facebook ben met mijn nieuws. Toe, janta aur aage ko hum apna program lekar chalte hain. Hum chali ra bhaiya santo ki chand santo ki to aaj duniya mein na hai. Lekin Suriname desh mein saban ukar ego boss build bana desh hai. Aur ekar mare mein kabhi koi zamana mein nikeri ke ane yani ki dukhi bole raha bole aaj Dimani is bole word and bill for him gemaakt. En hier pe fee happy ukar bill banai ke dhar dee se. En boss bill den van Chan Santoki. Ekar baare me fee happy ke onder voorzitter Asis Kumar Goyanen. Bole hega Santoki ke te laten ver eeuwigen. En enkel boss bill den Goyanen zegt dat alle leiders die bij de fee happy hebben uitgedragen moeten worden erkend, gerespecteerd en gewaardeerd. Bakie ek बारे में और कुछ यहां लिखल भैया कि बॉस बिल्डवा के बारे में ली फ्रांसीर जो रहा बैतलंद के है भाई गस्प्रेकन वर्दन गफूर्ड में ते ली फ्रांसीर इन है बैतलंद मर गया दी स्टेल दत ओक मार मुखलक ही दें साल वर्दन गकेकन एन देसे बॉस बिल्ड दोर लोकाले कुस्तनार ते लातन ओंटवेरपन तो यहां बताए गए है एक हैप इन द कादर फॉर द वीक मिट फ्रेंडन फॉर द पार्टी गस्प्रोकर एन दे सेन बरेट टू वर्कन विद द ली फ्रांसीर van een aantal borstbeelden uit het buitenland aan zo'n project dat heeft allemaal via Gayadin Bolise. Toen hier betaald gegeven is, dus bolle hege instemmen dat ook een formaat van een borstbeelden en hoe deze er precies uit moeten zien al die zaken moeten nog geplaatst worden. Ik hoop mensen dat een goede kunst naar dit kan maken, want hem vind ik er zelf persoonlijk dat de borst, de beeld van een Jagannath Lakshman niet precies is mensen. En het moet iemand zijn die niet meer ervaren en goed de beeld moet gaan maken. ये बात है हमारी जनता हमारी प्यारे प्यारे जनता एक आदमी भैया इन फाइव तक यार के अपन धान के खेत में वो मर गए भैया धान के खेत में अगर जब धान के बातचीत होवे लगल है तो दोस्तों हम लोग तिरक चुचिला निकेरी के एंड दैट क्लॉप्ड ऑगमेंट से क्वारंटाइन पोलर के बातचीत है हमारे जनता क्वारंटाइन पोलर के बात है तो क्वारंटाइन पोलर में एगो 51 यारक आदमी के लाश जाने लाइक मिलल है क्वारंटाइन पोलर में हमारी जनता

बात है निकेरी के। तो साथ ही साथ दोस्तों हम और आगे को अपना प्रोग्राम को लेकर आगे को बढ़ाते हैं। हम जानते हैं फेन फेलखा इस रात के हुतू के बारे में जो सऊदी अरबिया में जाए के और मांगत रहा जहां हज करल जाए ऊपर एगो ड्रोन दागे रहा। अब लेकिन अफेयर सिस्टम जो है सऊदी अरबिया ओके सका कर दी से गा कि जो अल्लाह के घर है वो तमाम अल्लाह के घर ना ऑन प्लॉप हुए। तो यहां बताए गए है फेल खैस रात जो है ऊपर और देल करी से गए कि हुतू अनफॉलो ऑफ सऊदी अरबिया के बारे में हमारी जनता फेल खैस रात जोन बोले हैगा ये यमन में है जोन हुतू से एगो खबल दानख ग्रुप है मेन से और जोन इस सब जाए के सऊदी अरबिया में दांगे है द लीडन फॉर फेल खैस रात फॉर और देलन इन द स्ट्रक्चर मोगले bewoordingen de Hutus aanvallen om de koninkrijk Saudi-Arabië op bolehega Iran ikke help kerehega Hutus ke en rukten recentelijk op in het zuidwesten van Jemen. Ook voerden ze aanvallen uit op Riyadh en de voor olie-export belangrijke Saudische havenstad van Yanbu. Toe hamari janta is hebben maand he larai ego na don hove he buitenland me Middellandse Oosten me और यहां पे दूसरा तीसरा आए के और शुरुआत हो जाए हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों। अब देखो भैया आने न्यूयॉर्क में वाशिंगटन में भैया वहां पर अब गैल है शिनी से परिचित दिया यिंगपिंग हुआ गैल है और डोनाल्ड ट्रंप भैया ओके भरी स्वागत करी से बहुत स्वागत करी से फेलिसिटेटन अमेरिकन से फॉलो फॉर 250 verjaardag van de onafhankelijkheid. Het bedankt een Amerikaanse echtpaar voor de ontvangst van de felicitatie. To Jinping, John, hebben jij in Washington meegeil, he, or Wampere, or Yaniki en Donald Trump, bahut swagat karise. Volgens Jinping moeten de twee landen hun verschillen niet uit de weg gaan, maar voorkomen dat de concurrentie uitmondt in conflict. To Lunjano, China, hebben jij Amerika, bahut tankelera, bole he, तो के तेल ना चाहिए रसलांग से लेवे के नहीं तो के हम जो ने ब्लास्टिंग हैगा हैविंग से हैगा सब हम चढ़ा दे रहा और यहां पर वो ही यिंगपिंग और डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप और ओकावे यिंगपिंग के फर्स्ट लेडी सब मिल के अब घूमे हैं और ओके रोंट लेडिंग बड़कवाल मिलल है चीना एंड अमेरिका आज twee grote wereldmachten een bijzondere verantwoordelijkheid heeft verwezen naar de afspraken die hij Trump eerder dit jaar in China zouden hebben gemaakt over de constructieve relatie van de strategische stabiliteit gebaat. Bataille gaye hai dosto, concurrentie moet binnen grenzen blijven. Dat klopt mensen, etra concurrentie net jahin hoe ke, het moet binnen de grenzen blijven. Belangrijke deel van de speech ging over de strategische rivaliteit tussen de twee landen. Bolle China en Amerika concurreren kunnen zijn, maar dat die concurrentie volgens hem gezond en begrensd moeten blijven mensen. तो ये चीन के बारे में आप लोग को हम बताए दे IMF सीट कांसेल रिशिको बेसनल अपमार्स फदीखिताल फालिता भैया IMF के बारे चीत हुए हैं। IMF तो जाने हैं भैया सूरीनाम के अपन कब्जा में पकड़ी से इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स के बारे में आप लोग को हम बताते हैं कि सूरीनाम देश जो है बिना कर्जा से देश वहां न चल सके है और IMF बपाल करे कैसे तू बसाए न करिए कैसे देश वहां चलाइए। यहां बताए गए हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स दैट द स्नेलो ओंटविकलिंग फॉर द डिजिटल फाइनेंशियल प्रोडक्ट रिस्कोस कैन ओप्लीवर फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड द पॉजिटिव ऑफ द नेशनल वैल्यूटा के बारे में हमारी जनता। और बताए गए हैं यहां पर कोपल अनबस्तान फलिता जो अमेरिकांस डॉलर है बोले ओवर क्रेन एंड बतालिंग होई के है फॉल्स IMF नो रिलेटिव क्लेन मार ग्रोय डोर दार कर द फोर्डिले टेकन ओवर स्टान सोल्स एंड गुडकोप इंटरनेशनल बतालिंग एंड बेटर टूगा फॉर फाइनेंशियल दिसते के बारे में आप लोग को हम बोले थोड़ा से फाइनेंशियल के बारे में सूरीनाम के बताई दे कि IMF भैया सूरीनाम में कैसे
गेरीकरी से। तो हमारे जनता, हमारे प्यारे प्यारे जनता, सुदामा के ऊपर हम जाएला भैया, ये कृष्ण के सुदामा ना है जोन हमारा हमारा गीता में है, ये उस सुदामा है जोन है गा फे हैप्पी फोर सीटर ए नीदरलैंड फंड डियास्पोरा के बारे में। तो डियास्पोरा वे हैव डियास्पोरा इन नीदरलैंड मेंसे VHP जोन हैगा नीदरलैंड में हैगा और बताए गए हैगा डियास्पोरा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड मिंदर अफंकलिक मार्का फन पर्सनलिक कांटेक्टन बोले जोन लोसे लोसे प्रोजेक्ट हैगा पॉलिटिक बलंग हैगा VHP नीदरलैंड्स फोर्सिटर है लक्ष्मण सुदामा के बातचीत करिल हमार जनता फॉर अ नेशनल डियास्पोरा रन बोले हैगा ब्रीदर इन फीलिंग करे फन रीगलिंग फन सुरिनाम्स अफकोन जोन हम लोंबाटी ओ हैगा पीएस जोन अदमी के पैसा है परसोन फॉर सुरिनाम से अफकों जितना अदमी सरनाम से यहाँ आयल है ओकर बारे में बोले हैं और द फोर्स टेल मार्क्ट डील आउट फ्रॉम द एस्पोरा विजी फ्रॉम 2000 टू 2050 यहाँ बताइए हैं। डोंडरडक के सेंट्रल स्टेल द टिंडे जगन्नाथ लक्ष्मण लीसन इन अमस्टर्डम में रहा और बोलेगा दी हेल्थ ओवर मार्क ओवर इंसिडेंटल हेल्प फरलीन नेशनल डियास्पोरा राज्य हैगा नीदरलैंड में बोले हैगा फोर्स टेल कुने डिविजेरन लुइस्ट्रन नाने डियास्पोरा एंड मेंस फन ऑर्गेनाइजेशन मेट एलकार तो वर्मिंडन तो VHP नीदरलैंड के बातचीत आप लोग को हम बताएला जो नहीं के डियास्पोरा के बारे में हमारे प्यारे प्यारे मीठा मीठा जनता। तो और आगे हम बोली तो के भैया सुरिनाम देश में क्वेट चोरी हो या पॉलिसी बिरोह से तुलन जाने हैं कई सिपाही पकड़ के बन भई सोना चोरी हो जाए भैया बड़ी बड़ी चीज हो जाए अब देखो यहाँ फिन कुछ गड़बड़ भैले शर्म लगे डर लगे बताओ तो मौसी बताओ डर लगे हैं पॉलिसी वेयर स्प्रे ब्रेक ओवर बिटवीन ब्रॉमफिश बाय पॉलिसी बिरो फूड टैक्स दैट नॉक बाय द बर्किंग बोले सब बोले ब्रमुआ हमार पॉलिसी बिरो से चोरी हो गई सिपाही बोले ना बोले बर्किंग विम्बा वन आदमी लोग के विश्वास ना रह गए सुरिनाम में भैया सिपाही के बदल करेला सोचो कर ब्रमुआ चल गए गो ब्रॉमफिश से गा दिन आ रहे बसलाख ना मेरे को पॉलिसी बिरो सेंटर में बिटवीन स्टार्ट फॉलोस कॉर्प पॉलिसी नॉक ऑन बाय द बर्किंग Wees spreekt daarmee publicatie van de snelle pennen. Stel dat de voertuig nog altijd onder verantwoordelijkheid van de politie valt. Want je door autobron veel je koets beslag kreeg, is de politie verantwoordelijk om die ding veilig te houden. Aanleiding van de reactie is een breek van de titel van de bronfiets verdwijnen bij de politiebureau Centrum. Kebari mee. Of Centrum, kisipahi, loon, tolonjano, bija. Ego Colombiaan, raak Braziliaan, banda, sipahi, ook een chorde raha. Aantelijk uur meer naar pakraan he. Oro kabole hega, sipahi, pakraike, banda, bijl hega. इसे वहां पे क्विक भी चल गए भैया कितना कितना क्लोज में से चीज चल जाए तो आदमी ब्रह्मा ना देखे तो डायरेक्ट बोलेगा तो ब्रोमफिश एन ऑफ मोटर में तो ग्रोथ कैबरेटर सोवेल द फॉर द अफ्टर फ्लिकिंग ऑन ब्रक इवन ऑल द कैंटेकन प्लांट एंड ऑन द फोर एंड अफ्टर साइड बोले द स्नेले पेन मेल्ट इन द अपडेट इंस्पेक्टर फ्रॉम द अफडेलिंग स्नेले पेन बोले आदमी स्नेल लिख देवे कि यूएस को तो लगे से चोरी हो गए वन मैन से हैव गेन वर्ट्राउ meer. Daar gaat het om. En als mensen vertrouwen hebben, dan gaan ze gewoon zeggen dat mijn ding dan daar nog veilig staat. Op jij dus toe, ja. Ja, ik aan mijn ghar toe raar. Bully Johnny is een hele normale zaak. Lik in beruchte verdachte in reeks voertuigfraudes. Na speurwerk opgevat. Vroeg autoke frauder kalera. Ja, ik aan mijn ik aan mijn briske aan mijn autoske frauder kalera. Ja, ik op स्पोरिंग अक्सी भैल है और एक के समय पकड़ ली से आंध्रा के निश्चित कोमन 17 तारीख सितंबर के बोले हैगा स्पेशलाइज्ड इंटेलिजेंस इन हेट वाज आउट गवर्क
Orike pa kalise baya abulie Johnny Conchi Carise eigenlijk met i baya verdachte wordt in verband gebracht met meerdere zaken. Bolle auto zijn verduisterd. Auto lasker de wat raje je ook de we baya dat we na pa je daarbij zou gebruik gemaakt van een vervalse bewijzen van bankoverschrijven. Uit verklaring van Ries aangehouden verdachte komt F naar voren al vermoedelijke opdrachtgever van diegene van de betalingsbewijzen. De Jeremia baya oud gevaren baya vals kutansie poes ansie banale wat raha moedie me baar na he bichara ke chori karat kar dek kaunchi kara baya jayla Ronnie Brunswijk ke oor Ronnie Brunswijk ke oor jay baya yo hi Ronnie Brunswijk he joon NDP ke sanghe asaid kam kere he sit in dena ap u kam bol NDP heeft de verkiezing niet gewonnen he baya NDP na jit te keise aan NDP Academie Janneke een grote deels onze vormkurser en jij bent ook een van de persoon dus aan Bob Leider John Bolle Barak kritisch Bolle Hega Bolle Hega Bolle, volgens hem worden vooral directe leden die door de geel-zwarte partij zijn voorgedragen op een oneerlijke manier in verband gebracht met de strafbare feiten. Bolle, abobke admijon he, bolle, kiusab oneerlijk zijn, oké behandel kere he. Bolle, NDP ke bolle he, a ohi ke regering be ba coalitie me. NDP denkt dat gewoon dat ze de verkiezing hebben gewonnen. Bolle, baki aise na, bolle, NDP ke 18 zetel he. और बोले 18 सीटों से तो बोले कुछ ना कर पाइए बोले आज बेफोरबील बोले आज बेफोरबील बोले एगो हड़िया में एन एमर इस ओवर खलोपन एन अबोब ताकि उनो वेरी नंगा दिन सांदी सी दन खान व डरेट अबोब कितना रोज से चिल्ला है बोले हम लोग थक जाब तो हड़िया में से निकल जाम बुधवार के बोली से एगो प्रोग्राम में ब्रेंसवेग बोली से रोनी ब्रेंसवेग बोली से फूर द आन दैट है नीट अलीन खुद मुत सेन ओम एन कोरम इन पार्लियामेंट फरलीन तो जाने कोरम मतलब के को ग्रुप चाहिए हो जाए कि तब तो फरहादर कर पाइए बोले हम लोग खाली ओकर खाली ना बाटी बोले इन फन साक जो हैगा हम लोग के overheid recent is omgaan met het schooltassenproject. Deze schooltassen zijn volgens hem politiek verdeeld. Schoolkids taasmataan bij NDP akeelbaante waarvan abba bole hem willen oma baate. Or bole hega tolunjane hega menu mitten ke baare me. Or oker baare me bataai se daarnaast blijkt dat de abba ook vaak niet op de hoogte wordt gebracht van de besluiten die worden genomen. Abba neer next. Laatst hoorde ik dat de menu mitten weg moeten. Maar we moeten praten. Dus ik krijg om mijn omiet een binnenland met onze mange kamkere. Om NDP kent mijn mange onze kent nikare. Om bole abob en if uno mamoro dan uno mamoro. Maar tot nu toe praat ik nog met de president. Laatst hadden we een heel lang gesprek met de president en ze zei Brunswijk, het gaat goed komen. Dus ik wacht erop. Mie en lukufa a ontwikkeling e go. To je maat he, hamari janta. En ze blijven maar, ze hebben koei appen, voordelen gaat regering met ghusel hè, en janta gaat keja hè, bhaiya, janta gaat behoud kamti, kaam hoewe hè. तो ये बात है सुरीनाम देश के रोजबेल मेनबाउ बाय पेलिन बर्गी अल 2020 गमेल eigen onderzoek door onveiligheid geblokkeerd भैया तो लोन जाने को बर्गी सुरीनाम में रोजबेल के इस सब सोना पोना कोने वाला चीज है भैया यहां बतावे मेनबाउ एक्टिविटीज जो हुए ओवरमांस gebied में 2020 में बेरे gevoegde overheidsinstantie सुरीनाम gemeld बोले है 23 september के बोले मीडिया बरक over de mijnbouw is in het gebied verklaar kreeg toestemmingen onderzoek van de delfstoffen te doen. Dus ja, pe iets kebare me batia udhar bhaiya bouters ke auratia kamange bhaiya
बहुतस के औरतिया मांगे हैं जैसे संतोखी लक्ष्मण के बेल्ट बनल हैं, बोले हैं ओकर अरमी बहुतस के बेल्ट चाही बने के दिसवा में, बोले हैं इंग्रिड बहुतस बोले बोले अन बुक विल आउट ब्रिंग ओवर द लीफन एंड ला लातस का वन बहुतस, बोले ना से आउट ब्रिंग फ्रॉम अ बुक विल से ओके स्टैंड फन बहुतस लातन माकन। अब बोलो भैया निचुआ स्टैंड बेल्ट तो आके कौन ची लिखल रहेगा, दिसंबर मोर्दन लिखल रहेगा कि लिखल रहेगा रेवोल्यूशन बहुता कि प्रेसिडेंट बहुतस लिखे दा लात एक दिन एवं अन द कंट मेंस अस अन कंट एकन। मार dan verdient de boek van een volledige eerlijke geschiedenis schrijven. Een boek van Bouters moet niet alleen positieve zaken bevatten, maar ook de donkere bladzijden uit zijn leven en geschiedenis zijn. Mensen, Johnson met Ronald Venetiaan, president Raha, hadden ze namelijk een boek gemaakt, ook voor en over Bouters en de regering, over decembermoorden en alles. En die geschiedenis wees de kinderen van ons in Suriname niet. En dat zou namelijk uitgedeeld worden in Suriname. Als Suriname school me bedoel Carilla, en die was met één namelijk me ja teruggetrokken naar Magra school me uchi jai ki ki lerken jane ki boutes konchi konchi karise van aan de revolutie ketra admi marane moiwana moord december moord euro presidentschap en van alles oi ja pe mange hega Ingrid Bouters boekwa banawe oi hua Bouters bolera hamare boek na bani or na jai school me want grote dienst is mensen jullie weten wat erin gaat staan. Op het standbeeld voor deze Bouters op basis waarvan op basis zijn betrokken bij de decembermoorden en ernstige mensen rechten schending, waar zou zo'n standbeeld moeten komen en in ieder geval op een openbare plek, zoals onafhankelijkheidsplein, misschien op de berm, en wat moeten wij dan zeggen tegen de nabestaanden van de 15 slachtoffer van december 2082, en wat moeten we zeggen tegen de nabestaanden van Herman Goeding en de slachtoffer van de bloedbad van de Tamarejo op 20 maart 87, waarbij 7 mensen op brute wijze werden vermoord. Dit zijn een van de gevallen mensen. Bouters werd veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. Wees er de medepleger van een moord. Het hof is daarbij op de leiding geven en alles bestaande een bepalende rol bij de geweten. Ab maya Ingrid Bouters en mange bari lamba chowra likal he. Lekin hem bole daarvoor hoeven wij niets uit onze geschiedenis weg te poetsen. Maar een standbeeld is iets anders. En daar wringt de schoen. Een standbeeld zegt, dit is iemand die wij willen eren. Voor wat mevrouw Ingrid Bouters, daar gaat het om. Op de kop, ja, tas met vuurwapen, munitie en valuta. Maar ja, jahanpe mattie jare he. Jahanpe mattie jare i uitkeke crematie oort ke banchit na Karela mausi. Crematie oort weg naar zeke banchit Karela. Manger ke banchit hoe ego auto turan he. Ego 58-jarige admike. De inbreker of inbrekers. U zap ego rug tas der la jema. Paisara pistola pistol ke laira olo drigo faluta omarha oma se inbrekers chorai ke leke bhagge hai Toyota Prado op ongeveer 100 meter van een trein en li vervolgens naar binnen. In de tas zaten een vuistvuurwapen, een bijbehorende patroonhouder met 10 patronen van 9 mm. Ook werden 2000 Amerikaanse dollar, 2000 euro en 20.000 Surinaamse dollars buitgemaakt. Het eerste petje leek het ook dat je mattie mee jaaike, bhaiya. तो के चाहे मट्टी में जाए के जहां पे लास्ट एयर तू गेले बतौख करे और तू पिस्तौल लेके 20,000 एसर दे 2,000 एरो नेख मिलीमीटर के पत्रों तू के कर खात ले गेले भैया तो लोन जानो नहीं तेज वास्त अलसो कि वेखना सी में तू जाइए मट्टी जरावे वार हील फील फन दी इन ब्रेकर्स Waren om auto daarin te breken en dit is weer het geval. Om de konja egomaand ouderwe schooluitval onder jongens werk een ondersteuningsproject van 300.000 euro gebaan. Ziet we maar in janta, lekker onze pijlen aap kohum. Ik geef zo naar dit he.

ये था रोबी उदित नारायण का ये सॉन्ग है हमारे दोस्तों जो आपको हमने बस सुनाई दिए हैं। हम और आगे को चलते हैं अपना प्रोग्राम की लेकर हमारे यारो हमारे दोस्तों। अब देखो भैया एक बरिस के बिटिया बेबी भैया एक बरिस के सी एक आसन बेबी एक बरिस के लड़का सूरीनाम में बुढ़ के मर गए भाई। तो बोलिए जॉनी उतो ना गए हुई पौड़े तिस्खीन खरपन से इंदर दांत उपौड़े ना गए बाकी एक बल्टी पानी में बिचारी गिर गए और उमा ये लड़का बिचारी मर गए है। बहुत दुख के बात है तमाम रेडियो फाहुन के ग्रुप इसके दुख में हम शामिल है। इन यार हमें बुधवार के अपन घरे एक बल्टी पानी में गिर गए है। ई बात हुए क्वाकार स्त्रात में सूरीनाम के ई फ्रांसी खन के गोसा स्त्रात है और बोले फुरनोमन वार्ड के एक बरिस के लड़का बुढ़ के मर गए बल्टी में भैया। अब खैफत मोनेबली से इन वास रेंट वार इन मेट वाटर खफिल द एमर स्टोन फरमुडलक प्रोबेर दे से इच आई द एमर द पाकन एंड फील अपन लड़कन के मोई से देखियो भैया। एक बरिस के लड़का अपन जिंदगी में बिचारी कौन चीव देखे रहा और वो गुजर गए है भैया गुजर गए है और बहुत बहुत दुख के बात है हमारे प्यारे प्यारे प्यारे जनता। अब देखो एगो नईखन तीन यार के गुमान के लड़की लाश हो गए सूरीनाम में मौसी 19 बरिस के लड़की लाश हो गए सूरीनाम के वांछित हुए है जेकर नाम बा लेडीज अनाबेल बालसेंदे मार्टिनेस इन सूरीनाम। बताए गए है का 3 महीना हो गए ये लड़कियां लाश हो गए है परिवार बड़ी दुख में है और सब एक मिलजुल के खोजे है। द मुदर हिप शेख मेट आंद्र नोट ओप्रो खवेन में नियो और बोले हैं एक्स्ट्रा डेड इन फॉर हर बसोरक्त है इन द टेलीफोन फॉर हर डॉक्टर दिस ऑफ फॉल्स द मुदर मोमेंटेल इन हंडन सैन फॉर मन दिस एंड आइसोलेटन अंडेड आज ब्लाका ओकर माई एगो आदमी संग एकर भलाका बोले है स्टार्ट ऑफ एंकल फोटो दिस फैमिली ही फर्स्टेरक द मुदर सेग दैट हर नीट लुक हर डॉक्टर सेल्फ टू स्पीक एंड एर इज एक्टर गेन बेवेस्टिंग दैट दिस मैन अ स्ट्राबार फेट ही प्ले की बोले ओही ना ओके लेके चल गई हुई बोले है 2 तारीख दिसंबर से लाश भेले। तो बोले हैगा खबर ऑफ 27 दिसंबर 2006 सांतियागो क्यूबा में और बोले फर्ट्रैक वोंड से हर फैमिली इन सैन माइकल in Padron in Havana me or bole hai Cuban di in Suriname woon in Mensels Cuba ke admi dheer Suriname me rahe bhaiya aur ye sab achi to hota hai dukh ke baat hai 19 baris ke bitiya ko ilaas hui hai bhaiya to bahut bahut dukh ke baat ab dekho bhaiya DJ Frey Khalatan Mensels smuggle ke baat hui hai admi ke naam ba DJ na baje wala nani ekar naam hue hai DJ RS sipahi bole hai ka baswar khama tegen verder vrijheid feit beneming advocaat John Maury Neptua hey bhaiya batai gayi hai 16 tarikh september ke bole ke pakdi se under mein mention smokel and mention handle ke bare mein bole hai ga ye namiya karat raha aur jane mention handle ke bare mein kaise hamare janta hum jai reslan bhaiya reslan badmansi kare bahut din se putin waq boli la nani ukrainer pe daage ab u apan plane उड़ावे भैया जो नाटो हैगा नाटो के ओम खीफिंग में उड़ावे कहने पोलैंड के खरेंज पे उड़ाई से और का बोले हैगा अब हिया बतावे स्विस एंड फिंस खफेक फ्लिक्टेकन से डोंडरदाग uitgereik om Russische militaire luchtvaartuigen te onderscheppen meldde Finse luchtmacht die vloog boven de internationale wateren van de Finse golf उस अब गए ले स्वीडन को फिनलैंड के बोले हैं कि एक ग्रुप रूसी से तो स्टेलन स्टेलन फास्ट डेट इट गिंग ओम एक मेडल गेवेक्ट फ्लिक्टेग एंड डी ट्रांसपोर्ट फ्लिक्टेग स्वीडन जो ने फिनलैंड है का बेइधर हम लोग के नाफो लेट है वर्कन सामन ओम एक लुक्ट्रेम डेट फर्दीडिगन एक अरबाने में फिनलैंड बोले इस तक के डेट लैंड का सामलिक सोन इंडेंटिफिकेशन मिशन आउटफोर्डर मेडर नाफो लैंड ओस्ट नो अने ओस्ट एन नॉर्थ नॉर्थ ओस्ट यूरोपा हैवन अफ़्कलोपन मांडन मेल ने कमा रूसलैंड स्कैंडिंग इन लुक्ट्रेम और हम मांगे ले जाने हम लोग के फेयर लाइडर जो है का और मारक
तो एकर बारे में क्या बोले हैं, कई ना एकर बारे में बोलत रहा। अब देखो भैया 6.6 मिलियार्ड यूरो के बारे में उक्रेन के सबन फ्राई करे से एयू और भरी के नानी हम लोग के बालास्टिंग वहां भरीगा। शुक्रवार के से स्टेम करी से उक्रेन के 6.6 मिलियार्ड फ्राई करी से मिलिटेर अंडरस्टैंड करी से जो रसलान से लाए हुए हैं एयू बैतलांस शेफ काया कालास अब एक सेट गेल्ड ओम कॉम्प vrij uit de Europese vredesfaciliteit EPF's kebare mee. Orbole 4,7 miljard is bedoeld voor de EU-landen, zelf waarvan sommige landen volgens hun volgend kalas hebben aangegeven. Toch maar de genta aanplukken. Bas samachar sunate hi rehte hai. हमारे जनता आप जोन आदमी यानी कि बैचलांत में है अमेरिका में है तो मंगे सूरीनाम के पासपोर्ट हुआ जाए के बनवाई सके है। यह बतावे सूरीनामर्स दी इन हिन बैचलांत अन क्राइकन अन्यू मोकलक है ओम हिन पासपोर्ट साकन अफ्त हंदलन। और बोले प्रेसिडेंट जिमोन बुधवार के न्यूयॉर्क में पासपोर्ट में बोली से बोले हैगा Application service officieel gelanceerd. De dienstverlening moet het aanvragen van een Surinaamse paspoort toegankelijker en efficiënter maken. Terwijl de beoordeling, goedkeuring en de uitgifte volledig onder verantwoordelijkheid van de overheid blijven. Dus de Surinaamse paspoort van je vanuit de New York Marine, daar is het nu wel mogelijk van afgelopen woensdag. Bolle paspoort blijft Surinaamse staatsdocument. Ambitie reikt verder naar New York. बहुत लंबा चौड़ा लिखा ले जनता इसके बारे में आप जानियो मंगियो जाने कैसे हम न्यूयॉर्क में बनावे सूरीनाम के पासपोर्ट दान मुझे यूली एवं तोह एवं ऑफ द वेबसाइट फन ओवरहेड खान सूरीनाम के कर्जा भैया प्लाफोन हबड़ा कर दे इसे नानी प्लाफोन वहां हबड़ा कर दे इसे स्टार्टस्कूल फन सूरीनाम यूनी 2026 में Bolle daalt eraan, maar blijft ruim boven een wettelijke plafond van 60% van het bruto binnenlandse product. Volgens de wettelijke berekening bedroeg de schuld van 119,6% van de BBP. BBP kan met lepje je trapt ook inkomsten, dus waarom aanwege je trapt export ooit jada ook in namage kardaleweke. Bakke is op deze pahile bouters getijd pe plafond wou overschrijden kardera is op pin kardese bhaiya. कर जो आप बहुत जबरजा है और उसे संबंध द्विंगी करे कुर्सुआ बचावे के मैं कर जो तो सबके चाहे भरे के द श्री नाम से एक नोम बोले हैं मेल की देर तक तो बुलेटिन है द स्कूल्ड ने फॉलोइंग द वेटलक डी डिफिनिशन मार्च में 121,1% लाखर यूनि में बोले 119,6% और बोले फॉलोइंग द इंटरनेशनल Die daalde de staatsschuld in dezelfde periode van 76,6%. De koets economie waarin we Suriname ke aanplop kohan boli bataai dee. Want de economie van Suriname gaat niet goed, mensen. Gaat niet goed. Op de koop van Suriname. Ban jane to jane charo bagal koi ke dukandar hai. Saban wachter dhare bhaiya nikeri ke oor hum jai la nani. Nikeri mego dukan ke naam ba Freddy Rishi. वेक में हुआ पे गो वाक्तर के हाथ गोड़ बांध के सुता है रहा चोर भाई निकेरी खलेत आन हो दें बोले द खबरदार खबरूफिंग बे द विंकल सा बोले हैगा न आई गो 45 यार के बे ये तेंदर रूफ वेर द वाक्तर के कनी फल अख्तर खलातन तरवेल द दांदर एर मेट एन ग्रोट गेल बदला सुरिनामसे डॉलर फन दोर गिंग और बताएगे डीपस्टाल मेट खवेल 7-8 सितंबर के बाद चित हुए रेशर चे पकड़ी से और हम तो सोचे निकेरी बहुत फैलक भैया निकेरी हम जाहिला तो फैलक फूलक करेला लेकिन अब देखो निकेरी में का हुए लगल है ये बात हुए गए सैरान वेख निकेरी एं फर्फॉल्क्स आन खाउदर में पकड़ाई गए हैं पैसवा खेलत वे नीट बे हैं मान खतरोफन पैसवा ना पैसे भैया तो पैसवा कहीं हो लोल खोद के गाड़ दे ले हुई मौसी तो कहाँ से तू पइये वो बोलिए हम जहलिया काट ले आबे तो फिन मौज करो तो
ये बातचीत है हमारे प्यारे प्यारे सूरीनाम के जनता, हम जाना जीनी जीनी बिजनवती।

और दोस्तों इसी ट्यून से हम अपना प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। और हमारा तुम्हारा मिलन रेडियो फोन के माध्यम से फिर मिलेंगे। बाय बाय स्वाई स्वाई। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। हमारा प्रोग्राम हर शुक्रवार को शाम के 6 से 7 बजे तक यानी कि लाइव यानी कि न्यूज पढ़ते हैं। मंगलवार को शाम को 6 बजे रविवार को इस प्रोग्राम को मेहरहाल करते हैं। बस सुनने के लिए धन्यवाद। बाय बाय स्वाई स्वाई।

En dat was een shuka shuka shuka chitri zong. और दोस्तों और आगे को हम चलते हैं बढ़ाते हैं अपना जोंग को and only the hot one by radio फा हॉन

हॉट वन सॉन्ग हम चलाते हैं, आप लोग जरूर सुनना। तो हम चलते हैं एक और सॉन्ग की ओर।

0: और क्या हुआ तेरा वादा नहीं खतीसी वत काली की रही मेक सॉन्ग जो पर्वत पंचू ने गाकर आपको सुना दिया है। और अगला गीत है बॉलीवुड पार्टी सॉन्ग।
1: हाय हाय हाय हाय हाय

और आगे भी यही शोर, पीछे भी पीछे पीछे यही शोर होता है, और इस पूरा दुनिया में शोर है द बेस्ट रेडियो स्टेशन ऑन द वर्ल्ड एंड दैट इज रेडियो वाहन और द

बलमुआ के बालम और बालमुआ के बालम के बाद हम क्या लाते हैं दोस्तों, भोजपुरी सॉन्ग के मूड में आज।

door Pawan Singh, Power Star Pawan Singh का भोजपुरी सॉन्ग है। अब लोग को हम कुछ मिक्स मक्स चलाएंगे, कुछ भोजपुरी कुछ बॉलीवुड सॉन्ग। और यहाँ पे नील कमल सिंह और क्या सुनाते हैं लड़की, ये लड़की क्या है दोस्तों, लड़की दीवानी।

दीवानी नील कमल जिंगा ये सॉन्ग है। तो अगला गीत क्या है दोस्तों, पवन सिंह अस्यल्पा राज का ये सॉन्ग है।

और दोस्तों पवन सिंह का ये सॉन्ग है जो आप लोग को सुनाए हैं। और आगे चलते हैं तमन्ना बतिया। तमन्ना बतिया क्यों?

ही देंगी। बोले पहले सॉरी तो बोल। तो सॉरी कब बोलेंगे दोस्तों? जब सॉरी के कुछ काम, तो सॉरी बोलना कब? जब आप कुछ कसूर करेंगे तब

0: Spanje, Lorette Mar. Van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torrenda Mark, Andorra, Taxfree, Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats, Ten Rijswijk, zwembad De Schilp en station Rotterdam. BGL reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Juvenile Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België reizen, live in concert, live in concert Juvenile Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Juvenile Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com. Hurry, kom, kill je. हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl. हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 07-36-522-47. Meer info www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.
2: Har dil se hamara nata hai, har dil se hamara rishta hai. हर रोज की तरह हमसे तुमसे होगी प्यारे प्यारे बातें और कुछ प्यारे प्यारे गाने हम आप लोग के सुनाने वाला है. जहां तक ये आवाज पहुंचे, जहां तक लोग मुझे सुनते हैं, हमारा प्यार भरा पैगाम पहुंचे, ढेर सारा मोहब्बत पहुंचे. आप सब जानते हैं हम सब चून है द एवरग्रीन लव फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे. हम आप लोग के आज चलेंगे कुछ मूवी, एक मूवी है जिसे काफ़ी अच्छे अच्छे गाने हैं और देखा जाए हरियाली और रास्ता के हम कुछ गाने आप लोग के सुनाएंगे. आज मेरा प्रोग्राम ऐसे रहेंगे, हम हर गाने सुनाएंगे आप लोगों के अच्छे अच्छे गाने जो हरियाली और रास्ते हरियाली और रास्ता में गाया गया है. तो हम ले चलते हैं पहला गाना, लेके चलते हैं हरियाली और रास्ता के नेखन तीन तो इन शस्त्र के, जिसमें मनोज कुमार माला जीना ने काम किया है, शंकर जाई किशन का ये म्यूजिक है और हम सुनते हैं, हम आप लोग के सुनाते हैं. चलो मिलके सुनते हैं.

0: जी हाँ दोस्तों, बोल मेरी तकदीर में क्या है, मेरे हम सफर अब तो बता, मूवी हरियाली और रास्ता नई खतीन तो शस्त्र का, जिस पे मनोज कुमार माला जिले ने काम किया है, शंकर जय किशन का म्यूजिक है। चलो हम ले चलते हैं एक बार फिर से हरियाली और रास्ता से निकाला हुआ एक गीत है, एक गाना है जो लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ है, और देखा जाए शंकर जय किशन का म्यूजिक है, लाख तारे आसमान पे।
1: आग

जय दोस्तों, दिल मेरा चुपचाप जला, हरियाली और रास्ता नेगेटिव ट्विन सेस्ट का फिल्म में मूवी। मनोज कुमार माला जीना ने इसमें काम किया था। अभी आप सुन रहे थे मुकेश और लता का आवाज। हमने चलते ही एक बार फिर से हरियाली और रास्ता का बोले, कहीं कहीं पे राजा और रानी भी रहता है ना, तो चलो राजा और रानी के बारे में हमको सुनाते हैं और हरियाली और रास्ता का निकाला गाना है।

जहाँ दोस्तों एक बार मैंने फिल्म से चला दिया था हरियाली और रास्ता का, मुझे बहुत पसंद है ये गाना। हम सोचते हैं आगे में आप लोग के भी पसंद है। तो ठीक है, एक था राजा एक था रानी।

जहाँ दोस्तों बोले नाव तो खो गया रह गया पानी, फिल्म हरियाली और रास्ता से भी आप सुन रहे थे, एक था राजा एक था रानी, नेकदिन टू इंसेस्ट का है, मनोज कुमार माला सिन्हा ने काम किया है। चलो हमें चलते हैं दोस्तों हरियाली और रास्ता का नेकदिन टू इंसेस्ट फिर से एक बार देखा जाए तो कौन सा गीत मैंने रखा है यहाँ पे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे। शंकर जय किशन का म्यूजिक है।

जहाँ दोस्तों इब्तदाई इश्क में हम हरियाली और रास्ता का निकाला हुआ गाना है, काफ़ी अच्छे अच्छे गाने हैं और ये मूवी भी काफ़ी अच्छी मूवी है। हम एक बार फिर चले चलते हैं ये हरियाली और रास्ता।

ये हरियाली और रास्ता 1962 का मूवी है, मनोज कुमार माला सिन्हा ने काम किया है। चलो एक गीत और है, बहुत ही बढ़िया गाना है, बहुत ही अच्छा गाना है, तेरी याद दिल से भुला ना सकूंगा। करोड़ों का दिल जीतने वाला मिलियंस ऑफ हार्ट, मुकेश का गाया हुआ गाना है। चलो हम सब मिलकर सुनते हैं हरियाली और रास्ता का ये निकाला हुआ गाना है, नेकेटिव का है जी। फिल्म बिना देखे से उसे देख सकता है, काफी अच्छी फिल्म है, मूवी।

जी हाँ दोस्तों, तेरी याद दिल से बोला ना सकूंगी, मूवी हरियाली और रास्ता नहीं कंती द मिलियन ऑफ आर्स नाइट मुकेश की आवाज थी, शंकर जय किशन का म्यूजिक थे, एक आखिरी गाना है फिल्म हरियाली और रास्ता का, हम सब मिलके सुनते ही परवानों की रात, आशा भोसले इस गाने को गाया है, नहीं कहते तो इस शस्त्र का है।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक आखिरी गाना मूवी हरियाली और रास्ता का। आशा भोसले ने गाया था, मनोज कुमार मलाजीना ने इसमें काम किया है, नई कंटिन ट्विंस का है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं मूवी हम आप लोग के लिए चलते नई कंटिन वेफन सेस्तक में। जोहर महमूद इन गोवा, आंखियों का नूर है तू, ये मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ है दोस्तों। सुलेमान कल्याणपुर जो इसका सिंगर है, सुलेमान कल्याणपुर और मुकेश ना लता मंगेशकर नहीं है, सुलेमान कल्याणपुर और मुकेश की आवाज़ है। कल्याण जानन जी का ये म्यूजिक है। और देखा जाए आप लोग के हमले चलते हैं नई कंटिन फाइव एंड सेस्टर में, आँखियों का नूर है तू।

जी दोस्तों, आँखियों का नूर है तू, आँखियों से दूर है तू, सुलेमान कल्याणपुरी और मुकेश की आवाज़ अभी थे। 1956 तक का ये गाना है और फिल्म हैगा जोहर महमूद इन गोवा। चल हम एक बार फिर से आपको ले जाते हैं 1956 तक में, जोहर महमूद और गोवा के एक बहुत ही अच्छा गाना है, अच्छा गीत है, मन्ना दे और पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी का, और इसका म्यूजिक सजाया गया है कल्याण जी, आनंद जी, अलाला जालाबादी इसका जो लिरिक्स लिखा है दोस्तों। चलो मिल के हम सुनाते हैं

चले हे चले हे चले हे ससुरार। अभी आप सुन रहे थे जोहर एंड महमूद इन गोवा, लोदो दीवाने दिल के चले हे देखो मिल के, महमूद सिमी अग्रवाल और जोहर इसमें काम किया है इस मूवी में। चलो हम ले चलते हैं एक ऐसा गाना है फिल्म जोहर महमूद के, जोहर महमूद इन गोवा निकले फैंस तक में। और देखा जाए तो एक जो गाना अब हम रखे बहुत वही गाना है और हम सब मिल के सुनेंगे, उषा खन्ना गाई से और मुकेश इसका जो म्यूजिक बजाए से कल्याण जी आनंद जी है, और वहीं जलाबादा जलाबादी का ये लिखा हुआ गाना है। हम आप लोग के सुनाते हैं दोस्तों एक ऐसा गाना जो हम बहुत दिन न सुन ली है और बहुत मन की सुनत, काफ़ी लोग जो प्रोग्राम को सुनते हैं, और अभी ये गाना आप सब के नाम है दोस्तों।

0: न कोई रहा है ना कोई रहेगा। जोहर महमूद इन गोवा, लेकिन तीन फैंस सस्त का गीत था दोस्तों। हम थे आपके आपके साथ अनिल सरजू, जो पूरा प्रोग्राम को आपको सुनाया है और उम्मीद है आप लोग के ज़रूर पसंद है ये प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, अभी ठीक है, यहाँ से हम कहते ही अपना आप सबको राम राम, नमस्कार।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling Sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken.

अभी आप सुन रहे थे एक बैठक गाना मैशो द टाइगर्स, यानी इस ग्रुप का नाम है द टाइगर्स। हरीश सुखदेव आपको सुनाने वाले हैं एक और मैशो। चलिए मिलकर सुनते हैं।

हरीश सुखदेव जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे एक मैशअप सुनने वालों। सोनिया सिंह आ रहे हैं प्रोग्राम में गिलबा का ग्याल।

सोनिया सिंह की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे गिलबा का ख्याल। लीला एम आ रहे हैं प्रोग्राम में सुनने वालों, और लीला एम जी आपको क्या सुनाने वाले हैं? अब चोलिया भीजे।

अभी आप सुन रहे थे अब चोलिया भीजे पसीन बनवारी, लीला एम आपको सुनाने वाले थे। मलेसा सिरपौल आ रहे हैं प्रोग्राम में साइड चेक।

0: Where's this mark?
1: Where's what?
0: Where's this here, so? Oh. Explain, Mark. Let me hear.
1: I can tell you the truth. You sitting? I had emergency.
2: अभी आप सुन रहे थे मलेसा शिपाहू की आवाज में साइड चेक रसिका दीनदयाल आ रहे हैं प्रोग्राम में बोले बोले हिरनवा

बोले बोले हिरनवा हमको न मार, हमको न मारो जंगलवा में, रसिका दीनदयाल आपको सुनाने वाले थे। प्रोग्राम को हम आगे में जारी करने वाले हैं। सुनने वालों, पृथ्वी आ रहे हैं प्रोग्राम में, श्याम सुंदर।

अभी आप सुन रहे थे श्याम सुंदर पृथ्वी की आवाज़ में, केनेथ सालिक आपको सुनाने वाले हैं राधिका वायुली वेंगो।

अभी आप सुन रहे थे उमर जी की आवाज़ में मेरा साया साथ होगा। उमर और निसाम जी आपको सुनाने वाले थे। प्रोग्राम में आ रहे हैं नदीम खान जी और नदीम खान आपको सुनाने वाले हैं जिंदगी चार दिन की ना रूठो सनम।

जिंदगी चार दिन की, ना रूठो सनम, फिर मिले या ना मिले। अभी आप सुन रहे थे नदीम खान जी की आवाज़ में। सुनने वालों, एक नया गीत जो हाल ही में अंदर आया है और आपको सुनाने वाले हैं जिया रामबरन के साथ में अनूप रामबरन। ये दोनों बाप बेटी है और इतनी मधुर भरी आवाज़ में इन दोनों ने ये गीत को गाए हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं। तुम मेरी जिंदगी में कुछ इस तरह से आए।

मेरी जिंदगी में कुछ इस तरह से आए, अभी आप सुन रहे थे जिया रामबरन के साथ में अनूप रामबरन जी आपको सुनाने वाले थे इस विनोद लक्ष्मण प्रोडक्शन अगेन। मैं नदिया की धारा वादिका रामसुकुल और स्टीफन बैताली आपको सुनाने वाले हैं।

स्टीफन बैताली और वादिका रामसुकुल आपको सुनाने वाले थे मैं नदिया की धारा बाहे तेरी किनारा। धीरज लाला राम जी प्रोग्राम में आ रहे हैं वादिका रामसुकुल के साथ में मेरे सनम तेरा खत मिला।

मेरी सनम तेरा खत मिला भी आप सुन रहे थे धीरज लाला राम और वादिका राम सुकुल जी की आवाज में। रायन मनोरथ आ रहे हैं प्रोग्राम में, मैं प्यार का दीवाना।

रायन मनोरथ जी से आप अभी सुन रहे थे। यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे, तुमसे एक मैशो भी आप सुन रहे थे। सुनने वालों, दविंदर सिंह सिवनाथ और सविता सिंह प्रोग्राम में आ रहे हैं, दो साथी जीवन के।

अभी आप सुन रहे थे दो साथी जीवन के, दविंदर सिंह सिवनाथ के साथ में सविता सिंह आपको सुनाने वाले थे। इंद्रनील रॉय और प्रशांत रामचेतन आ रहे हैं प्रोग्राम में एक मेदली के साथ।

रविंद्र नील रॉय और प्रशांत रामचंद्रन की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे ये मैथिली सॉन्ग जब जब बाहर आए। अब तो है तुमसे यानी एक मैथिली आप सुनेंगे काश बी की आवाज़ में।

आकाश बी की आवाज में भी आप सुन रहे थे ये मेडली सॉन्ग। रायन मनोरथ और जॉयस शिव प्रसाद प्रोग्राम में आ रहे हैं आपके आ जाने से।

जय शिव प्रसाद और रायन मनोरथ की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों। उमर वाहिद हुसैन आ रहे हैं प्रोग्राम में। घटा छा गई है

विभिन्न अधीन जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे किस्मत का खेल निराले मेरे भैया। सविता सिंह प्रोग्राम में आ रहे हैं आजारे परदेसी।

मैं तो कब से खड़ी, इस बार भी आप सुन रहे थे सविता सिंह जी की आवाज में कविता राम की सुन जी प्रोग्राम में आ रहे हैं कैचिंग माव कदी।

अभी आप सुन रहे थे कविता राम किशुन जी की आवाज में कैचिंग मालगाड़ी। प्रोग्राम में आ रहे हैं सविता सिंह जी दुपट्टा।

सविता सिंह की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे दुपट्टा। मैं प्यार का दीवाना रायन मनोरथ प्रोग्राम में आ रहे हैं।

रायन मनोरथ जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे। यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे तुमसे, मैशअप भी आप सुन रहे थे। दुबराज प्रसाद और सविता सिंह प्रोग्राम में आ रहे हैं।

जल्दी केवड़िया खोल दुबराज प्रसाद और सविता सिंह जी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे। कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो बिन बांधे बंध जाते हैं। संजय शिवराम और वादिका राम सुकुल जी आपको सुनाने वाले हैं।

Vadikaram Sukula or Sarasa me dekhe संजय शिवराम जी हाँ, संजय शिवराम और वादिका राम सुकुल जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो बिन बांधे बंध जाते हैं। संदेश सिद्दीन और सविता सिंह आपको सुनाने वाले हैं सजनवा।

0: सजन, अभी आप सुन रहे थे संदेश दिन और सविता सिंह जी की आवाज में रानी दत्ता जी प्रोग्राम में आ रहे हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं।
1: Like that, Jerry Bass concept. So

रानी दत्तई जी के आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये चटनी सॉन्ग। मोर चिरैया तोर चिरैया, आदित्य रामसुकुल जी आपको सुनाने वाले हैं।

आदित्य राम सुकुल जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे तो चिरैया मोर चिरैया। सोनिया सिंह प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों, शेक मी फेस्ट।

0: सोनिया सिंह की आवाज में भी आप सुन रहे थे शेक मे वेस्ट, सूते ना देवे सलेक्टा जी प्रोग्राम में आ रहे हैं।
1: सलेक्टा जेरी बेस कॉन्सेप्ट सलेक्टा।

0: दर्पण को देखा तूने जब जब किया श्रृंगार, मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। दिल की गहराइयों से ये गीत हमेशा ये शख्स गाता रहा। ये फनकार आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम इसे अवश्य याद करते हैं। स्टूडियो में भैया जॉन है, भैया यूस है, और मेरा दाहिना हाथ भैया रजेश बदलू, और भैया पूरन है। भैया जॉन और भैया पूरन को एक दो गाने के बाद हम समाप्त करेंगे। सबसे पहले आप दोनों के बहुत बहुत कोटि से धन्यवाद दे रहे हैं कि करीबन कितने साल में 9 साल बाद आए हैं ना। हाँ, करीबन 9 साल बाद आए हैं, मौका नहीं मिला। अगर शायद कोरोना नहीं होता तो आज के दिन आप लोग की ओपनिंग होता, कोई कुछ होता, कोई कुछ होता। हाँ, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग आ गए हैं। भैया जॉन
1: नहीं भाई, बदान फॉर योर आउटनोडिंग एंड बेलकोर्ट।
0: ये तो होना ही था।
1: हाँ, अब 9 बरिस बाद ना हमारे यहाँ में 1 महीना बाद हम लोग यहाँ फिर रहा। एंड नतीजा अलग लॉस्टरार्स जोन आप बहुत इंतजार में हमारे ग्रुप के, वो बेलकोर्ट हम लात बहु को की कोरोना निकली एंड दन सही होते भाई। बदान फॉर द लॉस्टर मैन से एंड जो अनाउंसर साहब यहाँ बैठे हो, जितना दोस्त लोग है सबके बहुत धन्यवाद एंड फाहून की तरफ से। एंड एक सौ से हमें जो तो
2: सीन्स और जरूर भगवान की कृपा जरूर मुलाकात होगा। अच्छा भाई, थैंक यू।
0: अच्छा भैया जॉन, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया गांधी पूरन हमारा ऑर्गेनाइजर जो है
3: लेस्टर आर्ट्स नखमाल से बदंग टोक नाम इज द ऑर्गेनाइजेशन जी एम प्रमोशन एंड स्टिफ्टिंग दोस्ती। Vandaag zou hij onze Mukesh G 98 jaar worden. Helaas hebben we dus niet kunnen herdenken, maar over 2 jaar gaat hij 100 jaar worden en dan beloven wij het luisteraars dat we heel groot gaan hem gaan herdenken en ook in een mooie theater. Dat beloven wij wel. En nogmaals, Radio Fahon, bestuursleden, directie, personeel, iedereen, heel, heel, heel hartelijk bedankt. En tot horens voor straks, welterusten.
0: Bhaiya Gandhi, bahut bahut dhanyawad. पता ना है कल किसने देखा है, लेकिन मैं अभी से सोच रहा हूँ कि में ये 100 साल हम लोग जरूर देखेंगे।
2: बहुत जबर भाई,
0: अपने बारे में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन
3: सही बात है। And dit wordt niet een plan B, maar dit wordt plan A.
0: Met heel veel armen en benen, ogen en haken, die moeten wij allemaal op poten zetten.
3: Yeah, precies.
0: Bhaiya John, of Bhaiya Gandhi Puran, Bhaiya Yogs, of Bhaiya Rajesh Badlu, Bhaiya Silvia tha, और भैया महेंद्र गुदर भी, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं जो कि आज की रात अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए हैं। इसके लिए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के डायरेक्टर भैया शिव जो हैं, और जितनी अमरूपर से अमरूपसर से जो कार्यक्रम नहीं सुनते होंगे और शायद सुनते भी होंगे, उन सब की तरफ से आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है। ये आखिरी गीत मैं पेश करने जा रहा हूँ। जी हाँ, चलिए ये गीत हम आपको सुनाते हैं। एक गीत हमने रखे थे भैया गांधी पूरन ने कहा, फिर भैया का गांधी पूरन ने कहा जी नहीं गंगा इसे निकाल दो। जिस तरह से मुकेश के गाना निकाल दिया गया, चलो हम भी निकाल देते हैं। इस गीत को निकाल देते हैं और एक डिपो में रख देते हैं, ये एक दिन निकालेंगे ज़रूर।
3: तो वैसे तो हम सीख ले बाटी ना। कौन गा रहा है? मेरा नाम योकर की फिल्म
4: हो
3: ना,
4: तो
3: जीना यहाँ
4: नहीं नहीं नहीं नहीं

देख सकते नहीं तुमको जी भर के हम। मैती मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस, करोड़ों के दिल चुराने वाला मुकेश चंद माथुर, आपको सुनाए फिल्म इल्जाम में से निकाले हैं, नहीं तीन सही तक 1970। भैया जॉन सुनने वाले श्रोताओं, भैया जॉन मेरा ये मेरा कहानी, इतनी देर से बैठ कर मुकेश जी की कहानी बताते थे, अब मेरी कहानी सुन लो भाई। जो गीत मैं अब चलाने जा रहा हूँ वो आखिरी गीत है आज की रात की। और ये गीत की कहानी ये है, हम लोग साथी तो थे ना, हम लोग भारत गए तो एक आदमी के पास गए, उनके पास बहुत गाना था, तो ये गीत उन्होंने कॉप टेलीफोन को हम लोगों को सुनाया और बताया कि इतना पैसा दो। हम लोगों ने 3 दिन उसके बारे में सोचे, चौथा दिन, पांचवा दिन आने वाला था वापस एम्स्टरडम, तो चौथा दिन गए, हमने कहा अच्छा भाई दे दो। अब इसके लिए तब खोल का ज़माना रहा, हम लोगों ने 305 तक खोल भरे इस गीत को, 305 तक खोल भरे, और मिला किस पर, एक कसेट पर उन्होंने ये गीत दिया। और वो गीत बाद में देखो हर एक के पास है।

ना कजरे की धार, ये नॉन फिल्म का गीत है और हमने आपको सुनाए हैं। और एक आखिरी गीत चला रहा हूँ क्योंकि लोग तो कहते हैं इसे बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, लेकिन कल भी कुछ करना हर एक को यहाँ जो बैठे हैं, तो ये आखिरी गीत मैं चला रहा हूँ। एक बार फिर भैया जॉन, भैया गांधी, भैया शिव को और भैया महेंद्र गुदर को, भैया यूस को, यूसेफ को, और मेरा दाहिना हाथ जो है मेरा टेक्निशियन वो है भैया राजेश बदलू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आज की रात मुकेश की याद में मेरा साथ दिए। चलिए ये आखिरी गीत से हम समाप्त करते हैं।

0: खैर उन्होंने बड़ी जद्दोजहद के बाद इस चीज के ऊपर वो एग्री किया कि भाई हम एक वीक रखेंगे और अगर पब्लिक को ये गाना पसंद आया तो इसे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो इसे पिक्चर में से निकाल दिया जाए।
1: आज तक लोगों को दिल जलता है तो जलने दो, याद है जी। मेरी बड़ी इच्छा है कि आप थोड़ी देर के लिए इसे गुनगुनाएं, अगर
0: जरूर लीजिए, अगर आपके हमें पूरा गाना।
1: हाँ हाँ जरूर सुनिए।

0: कभी।
1: इस कलाकार ने दिल जलने और आंसू भरी जीवन की राहों से निकलकर बहारों के भी ख्वाब देखे। मचलते हुए आशिक के रूप को प्रतिबिंबित करता हुआ उनका यह स्वर।

मुकेश संगीत का आशिक था। बड़ी से बड़ी कठिनाई उनकी धुन में बाधक नहीं हो सकी। बस मुकेश हमेशा ही जीवन में गुनगुनाते रहे। उनकी प्रेरणा जाने कौन थी, किसकी मित्रता उनके गीतों को गीतों का रूप देती थी।

0: मुकेश ने आखिर गीत संगीत के जीवन में प्रवेश कैसे किया, उनके पिता क्या चाहते थे, वे क्या बने, उन्हीं के स्वर में सुनिए।
1: ओ था, वो भी एक ड्रीम था। हम एक मेरी सिस्टर की शादी के अंदर साहब गाना गा रहे थे और उसमें दो साहिबान फिल्म के आए हुए थे, तो शादी की बारात को एंटरटेन करने के लिए लड़की वाले भाई हमेशा करते ही हैं, कोई शराब ला रहा है, कोई कबाब ला रहा है
2: जे।
1: हमारे सामने कहा भाई हारमोनियम लगाओ भाई, गाना वाना गाएंगे। हमने गाना वाना गा दिया था। वो दो साहिबान अगले दिन मेरे घर पे आ गए।
2: ये कोई फिल्मी गाना था जो आप गा रहे हैं?
1: जी हाँ, मैं सैगल साहब का गाना गा रहा।
2: अच्छा।
1: हाँ जी, सारी रात गाना बजाना होता रहा। अगले दिन वो सवेरे हमारे वालिद साहब से मिलने चले आए। कहने लगे साहब आपके साहेबजादे में बड़ी टैलेंट है, तो बहुत अच्छा गाना गाना जानते हैं। हमारे फादर को तो पता ही नहीं था गाना किसे कहते हैं, ना हमें पता था, मैट्रिक में पढ़ा करते थे। फादर बड़े ताज्जुब हो गए, कहने क्या कह रहे, क्या कौन है ये, कौन लोग हैं ये? मैंने कहा जी ये बड़े फिल्म के बहुत बड़े मशहूर आदमी हैं, इन लोगों को तो कहे मशहूर वशहूर तो होंगे, ये क्या चाहते हैं तुमसे? तो उन्होंने कहा कि जी नहीं फिल्म में भेज दीजिए, सैगल से भी बड़ा नाम कमाएंगे। तो सैगल ही एक नाम था जो हमारे फादर ने सुना था, और तो किसी को जानते जानते नहीं
2: जी।
1: तो खैर साहब वो उस वक्त तो उस चीज पर जमन नहीं हुए। वो फादर ने कहा कि नहीं भाई हम तो क्लर्क क्लर्क बनवा देंगे अपने लड़के को और ठीक हो जाएगा। तो था वो ऐसा कि नेशनल स्टूडियो के अंदर नलिनी जयवंत को इन्होंने हीरोइन लिया था, और उसके लिए एक नए लड़के की तलाश थी उन्हें, और वो चाहते थे कोई सिंगिंग हीरो आए

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतोने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतोने के लिए तार कीजिए 9735 6320 तक सेवन फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 6 2 2 6 9 8 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

तो यारो देखा जाए आम को हम नाइटिंगेल लता जी का सॉन्ग सुनाते हैं, और ये कौन सा गीत है, मूवी का नाम है, यानी कि एक मस्त भरी गीत है, अभी आप लोग को बताएंगे और आगे इस गीत के बारे में।

उड़ते थे मेरे बीच में, कैसा है ये बंधन, तो ये अनजाना है कमल हसन रति अग्निहोत्री का, ये मूवी एल्बम हैगा नचिकेता जी का, ये सॉन्ग है एक और हो जाए।

1981 का ये सॉन्ग है एक और चलते है यार नहीं घतक का अलका यांगनी कुमार शानू उदित नारायण का ये गीत है जो आपको जरूर पसंद होगा।

और चेहरा तो क्या देखियो भैया, दिल में उतरियो तो उसका मजा आपको और मिलेगा। कायांगनी कुमार चानू।

और देखा है, क्या देखा है, क्या देखा है, साजन के प्यार देखा है, और कहां देखा है, आंखों में जाकर देखा है, और देखा है तो और आगे क्या देखेंगे। नैतिक लता जी पर माशी मोहम्मद रफी का एक और सॉन्ग हो जाए, तेरे नीले नीले आंखों की।

दोस्तों जोंग जोंग जोंग मूवी का नाम है तुमसे अच्छा कौन है 1969 रंगत तेरी सूरज से इस रोमांटिक ड्यूएट सॉन्ग बाय द गोल्डन वॉइस ऑफ नाइटिंगेल लता मंगेशकर एंड परमा श्री मोहम्मद रफी वाइट हसर जयपुर सॉन्ग द हिट्स। उसके बाद हम चलते हैं मूवी का नाम है वक्त 1965 का एक सुपर हिट सॉन्ग है जो परमा श्री रफी जी का यानी कि रफी जी का सॉन्ग है और सुना जाए।

और ऐ मेरी जोहरा ज़बी, तुझको मालूम नहीं है कि आप कितना हसीन है, और तुझे ये भी मालूम नहीं है कि अभी हम कितना जवान है। ये तो बातचीत हो रहा है और ये बात तो दो प्यार करने वालों के लिए है, और उसके बाद हम चलते हैं। आप यहाँ आए और जॉनी के पास किस लिए गीत सुनने को, आप यहाँ आए किस लिए। और दादा किशोर जी का ये सॉन्ग है, आशा भोसले का ये गाना है, हिंदी मूवी सॉन्ग। तो दोस्तों, किशोर दादा आशा भोसले का सॉन्ग, मूवी के नाम है कल आज और कल। 97.1 का ये प्यार भरी मस्त भरी सॉन्ग है, जिबर हिट सॉन्ग।

0: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: आज देखिए तो क्या हसीन रात है।

0: बोलो।
1: आज लेना एक वादा है।
0: क्या?
1: आजा आजा, शादी का इरादा है।
0: क्या?
1: शादी का इरादा है।
0: शादी
1: का इरादा है।
0: शादी का इरादा है। शादी ना बना।
1: मगर क्यों?
0: शादी तो बर्बादी है।
1: क्या कहती हो?
0: हो जाती आजादी है।
1: नहीं नहीं, सुनो तो, बुलाया इसलिए आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए।
2: और आपको मुस्कुराने की तो बात है दोस्तों, और ये गीत एक बेमिसाल गीत किशोर दादा आशा जी का, और हम चलते हैं अगला सॉन्ग की ओर। वो है, वो क्या है, आप खुद ही सुनिए। चेहरे पे खुशी छा जाती है, क्यों छा जाती है, जो किसी को प्यार आ जाते हैं।

दिन है बहार की और लाखों गम संसार के और आ जाना। तो कुछ नए कुछ पुराने गीत, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगा और तुझे हम तेरी तेरी धड़कनों से पहचान लूंगा। कुमार शानू अलका याग्निक का ये सॉन्ग है।

बदल न जाना मौसम की तरह, मूवी के नाम था तलाश की बात में हम जाते हैं। मूवी का नाम है राजा निघंटिन 105 निकट का ये प्यार भरी सॉन्ग अलका याग्निक और उदित नारायण का ये मीठा मीठा लवली प्यार भरी और ये गीत है।

और चरण फिर से तुम जरूर कहना कि आपकी जोनी का प्रोग्राम कैसे लग रहा है। मीठी मीठी प्यारी प्यारी बात करने की आदत से बन गया है तो दिल तेरे दिल मेरे पास और रहना, तेरे दिल मेरे पास रहना। उदित नारायण आका याग्निक का ये जोंग है।

और तेरे दिल मेरे पास भी अब रहने दो ना। अगर जे तेरे दिल मेरे पास है तो उसको क्या लोगे। एक बीच में ओल्ड एंड गोल्ड की सॉन्ग भी आप लोग को हम सुना देते हैं। ऐ हुस्न परी चेहरा, शरबानु राजेंद्र कुमार का ये जो है फिल्म है और जिसमें मूवी का नाम है, यहाँ पर बताई गई है, इस ओल्ड इज गोल्ड अमन जोंग का ये गीत है। पद्मश्री मोहम्मद रफी का ये गाया हुआ गीत, आओ सुना जाए।

पसंद हो राजेंद्र कुमार शेरवानू अमन सॉन्ग्स का ये गीत है, एक ओल्ड एंड गोल्ड भी इसमें हम लगा दिया है। साथ ही साथ हम चलते हैं जोनू जोनू और जोनू निगम की ओर चलते हैं, जिसने यार नहीं खन तक हिट सॉन्ग है गोविंदा जी इसमें क्या करते भैया, किसी को दुल्हन बनाते हैं। अगर आप भी अपन दुल्हनिया के लिए कुछ गीत गाना चाहते या बजवाना चाहते हैं तो यहाँ सुनिए कौन सा गीत आपको चॉइस करना चाहिए।

समझ गए ना कि जिद मत करना, अगर शादी बनाना है तो उसी से बनाइए, नहीं कुंवारा मर जाओ और नहीं कुंवारी मर जाओ, शादी बनाना है उसी से बनाओ जिससे दिल लग गया है। दोस्तों एक और ओल्ड एंड गोल्ड की ओर हम चलते हैं, और ये है सुरहरी दार गर्दन कोयल सी है आवाज, और ये है सैरा भानु राजेंद्र कुमार का, ये फिल्म है पद्माश्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ गीत है।

और सुराहीदार गर्दन कोयल सी है आवाज। और ये ओल्ड एंड गोल्ड के बाद में हम चलते हैं प्यार दिलों की।

मोहब्बत हो जाती है मेरे यार। मौफी के नाम था हीरो नंबर वन फन 1999। और ये है मूवी के नाम क्या है मेरे ख्याल से भाई गीता दत्त इस फिल्म में काम किए हैं। आओ सुनाइए कौन से नंबर ये है।

मुझे बता दे तू भी किस पे आ गया है। गीता दत्त का ये सॉन्ग थे हमारे दोस्तों, और तो इस मूवी का नाम है नागिन। बहुत लोग देखकर इस फिल्म को पसंद किया है, और परमाशी मोहम्मद रफी और रफी का ये यानी कि आशा जी का ये सॉन्ग है, आओ मिलकर सुना जाए।

होगा। मूवी के नाम थे नागिन का ये सॉन्ग, सुपर हिट्स फिल्म थी हमारी दोस्तों। ये भी एक जिपर जिपर एंड जिबर सॉन्ग थे पद्माशी रफी के बांध में। हम आते हैं नाइटिंगेल लता जी और तलत महमूद का ये बॉलीवुड क्लासिक सॉन्ग है, निखती होंद शस्त्र का ये गीत है और सुना जाए।

ये सुपर सॉन्ग थे 7000 किशोर दादा, क्या सुनाते हैं एक डुएट के ओर हम लोग आज चला जाएं। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और शर्मिला टैगोर अपना कला को बहुत ठीक से किया है।

और मैं प्यासा तुम सावन द्वैत सॉन्ग किशोर दादा और नाइटी के लता जी का और ये सुपर सॉन्ग थे। एक दोस्तों हम चलते हैं एक और हो या आए हैं दूर से, आए हैं दूर से रेडियो फोन में और दूर दूर तक हम सबका आवाज तो जाते

और दोस्तों इसके बाद तो हम चलते हैं एक सुपर सॉन्ग की ओर। दूसरा आदमी जिसमें इस मूवी में ऋषि कपूर और नीतू सिंह ने काम किया है, किशोर कुमार का ये सॉन्ग है लता जी के साथ। और ये गीत गाते गाते गाते गाते ऋषि कपूर और नीतू सिंह में प्यार हो जाते हैं और शादी भी कर लेते हैं।

और नजरों से तो कह दिया है प्यार में क्या क्या हो जाते हैं। और अगर आपको प्यार भी हो गया है ये छोटी उम्र में तो ये गीत आपको सुनना पड़ेगा दोस्तों। छोटी छोटी उम्र में क्या क्या ना हो जाता है और वो कभी बाद में पछताना पड़ता है नहीं, बाद में उसको हम पछताते ही नहीं, सोचते ही कि खूब किया है, ठीक किया है।

मूवी के नाम है बैराग, छोटी सी उम्र में। और नैति जी लता जी का ये जोन थे जिसमें दिलीप कुमार और शायरा मानू ने काम किया है। बाद में जाकर ये दोनों भी शादी कर लिए थे। उम्र में शायरा बानू बहुत ही छोटी थी दिलीप कुमार के आगे, फिर भी छोटी सी उम्र में प्यार तो हो जाते हैं। और कभी कभी हम चला जाते हैं उस ओर जब कभी हम भी 16 साल के थे। आओ सुना जाए तो क्या होते थे उस जमाने में जब हम लोग 16 साल के थे।

17 भी बिट जाएगा और 17 बस बांध में 50 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, तो सोचते रहना कि क्या हुआ है। फिल्म बैराग की ओर हम फिर एक बार चलते हैं।

0: मेरा नाम है
1: आशिक,
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।
1: जैसे भी हो तुम, जैसे भी हो, जैसे भी हो।

बड़ी खूबसूरत है तू, हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

0: आशिक मेरा नाम है
1: आशिक
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।

और दोस्तों सारे शहर में अब सा और कोई नहीं है। सारे शहर में फिल्म के नाम बैरांग नीखती होंदत एन जसन जीवत का ये जोंग है हमारे दोस्तों। और ये जिपर सॉन्ग है दोस्तों, अनहिट फिल्म जो ये गीत नीदरलैंड में बनाए गए हैं।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

और मैं पल दो पल का शायर शायर और शायर हूँ। तो ये गीत को है सलमा और सबीना का, तौबा तौबा मामा मिया।

और तौबा तौबा चक्कर में न आना, और बुरा है जमाना, सलमा और सबीना का ये सॉन्ग है। तो ये गीत कौन है दोस्तों, ये भी एक यूपी पोल पद्मश्री मोहम्मद रफी का एक हिट सॉन्ग है, जो यहाँ से हम आपको सुनाते हैं। तू इस तरह से मेरे जिंदगी में और आना, कौन इस तरह से आना, ये गीत आपको बताते हैं।

0: और तुम इस तरह से और मेरे जिंदगी में शामिल जरूर होना।
1: तो महेंद्र कपूर का ये एक लाइफ ऑफ नाम है जो आप लोग को हम सुनाएंगे।

0: आए जानी चमनी और तेरा गोरा गोरा बनन में क्या हलचल मच चुका है।
1: जब सिमट के
0: ओहो आशा जी रोमांटिक सॉन्ग वक्त सॉन्ग के नाम है जब हम जब जमीन पे वो फिक्र नाम है वक्त 1965 का।

और वो है महेंद्र कपूर का ये सॉन्ग है। दोस्तों हम चलते हैं अगला सॉन्ग के लिए। तो ये क्या है दोस्तों, हम सफर मेरी हम सफर और वो नाइटिंगेल नाइटिंगेल और वो है लता जी का ये सॉन्ग है।